0: पंकज उदास
1: और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत आपको सुनाया गया फिल्म मोहरा में से निकाल कर। म्यूजिक डायरेक्टर है विजू शाह का कल्याण जी का बेटा है। आज वो कल्याण जी आनंद जो दो हैं दोनों म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कल्याण जी का बेटा है। विजू शाह के साज पर ये शानदार गीत पेश हुआ ओवर फाउंड हिंदुस्तानी गीत रखे हैं। तो चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं प्लेन में जो रखा हुआ है आपका जाना पहचाना गीत है इस तरह से।

बाहों में तेरे मस्ती के घेरे ये गीत सुनाया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर। जब आप चुने तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं। ये फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं, जी हाँ फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं, ये गीत हम आपको सुनाते हैं। चलो सुनते इस तरह से।

हर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, ये शानदार गीत चला शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। फिल्म कलंक में से निकाले हैं और गाने वाले थे श्रिया घोषाल और वैशाली प्रीतम के साथ पर ये पेश किया गया। चलिए अगला गीत हम सुनाने वाले हैं आपको और वो ये है।

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहेब और लता जी फिल्म अकेली मत जाइए निगती इंद्रियन सस्तख में से निकाल कर हम आपको सुनाए शानदार फिल्म। चलिए वे प्लेटफॉर्म FM पिंतनल पर आप चुने जो लोग चुनकी मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

हरिवीराम रुणालैला आपको सुनाए ये शानदार गीत और हम पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। क्या ख्याल है, चलिए सुनते फिल्म काला पत्थर में से, काला पत्थर में से निकाल रहे हैं।

हम बनाएंगे एक आशियां, ये गीत आपको सुनाया गया। लेकिन गलती हमने कहा क्योंकि नंबर बदला हुआ था ना, फिल्म काला पत्थर का नहीं है, लेकिन ये है आरती मुखर्जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए, ये दो पंछी दो तिनके, फिल्म तपस्या में से निकाले हैं। क्योंकि नंबर गलत था इसीलिए हमने पढ़ा नहीं लेकिन कह दिया, क्षमा करना, और फिल्म तपस्या में से निकाले हैं। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है? इस तरह से है

साथियाँ नहीं जाना कि जी ना लगे, ये शानदार गीत चला और ये दुएट चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम रहे रख प्लेयर में रखे, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चांद ग्रहण में से निकाले हैं जयदेव के साथ।

0: इन्हें दिल को दिल समझा नहीं है, ये शानदार गीत हमने आपको सुनाए हैं फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल कर जयदेव के साज पर, और इसका म्यूजिक नेकतीन सीफन नेखन तक में निकला। तो आप सोच रहे होंगे नेकतीन सीफन नेखन तक, जबकि मुकेश जी के स्वर्गवास हो चुका था नेकतीन ससन सीफन तक में। बात यह है ये फिल्म बना, रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लड़ाई से ये गीत निकला नहीं, फिल्म भी नहीं निकला। तो बाद में जाकर सोनी म्यूजिक ने इस गीत को निकाला, और पता नहीं ये फिल्म निकला या नहीं। बहरहाल नेकतीन सीफन नेखन तक में जाकर ये गीत निकाला गया सोनी म्यूजिक के जरिए। चलिए अगला बयान हम आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है, और वो है ये भी माइट मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिनियंस।
1: तेरा प्यार
0: असल में ये एक फरमाइश का गीत है, लेकिन कभी नहीं चलता, इसलिए हम आपको सुनाते हैं।

0: तेरा प्यार से जीवन भर जाए, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, इसलिए पेश की क्योंकि ये गीत नहीं चलता है और ये आशीर्वाद के तौर पर ये गीत को चलाया जाता है शादी विवाह में। हमने चला दी, शायद आप कभी फरमाइश दोगे और बेटी की शादी है तो इसके बारे में चर्चा करना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो वाले अवश्य जानते हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम और आपको ये सुनाते हैं, बस वाह क्या बात है।
1: Never miss an update.

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। लता जी आपको सुनाए हैं फिल्म दर्द में से निकाले हैं निगहतिन एन तख्त का ये रोमांटिक सॉन्ग, ये प्यार भरा गीत हम आपको सुनाए हैं फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुने जो लोग चुन के हैं आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको ये क्या सुना रहे हैं, वह क्या बात है। मुकेश और कंचन फिल्म धर्मात्मा में से

तुमने किसी से कभी प्यार किया है कंचन और मैथी मुकेश ने तीन फाइव सही में तो धर्मात्मा में से निकाल कर ये शानदार गीत पेश किया गया फोर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो लीजिए इस तरह से लगातार प्रेम कहानियां ये सुनाती हैं।

अपनी प्रेम कहानियां लता जी आपको सुनाए। फिल्म मेरा गांव मेरा देश, फिल्म मेरा गांव मेरा देश से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आओ ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप जो चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत किया जा रहा है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, आओ इस तरह से लीजिए।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम।
1: ये वाक्य आपने सुने, बड़े मियाँ दीवाने हैं। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

खान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे, ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है, तो लीजिए। आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें एक प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश कर रहे हैं इस तरह से रवि साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, लेकिन तीन सस्तक 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। किशोर कुमार

एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है, क्या प्यार में ये भी होता है कि जिस समय आप प्यार करते हो तो आपकी सांसें रुक जाती हैं? अच्छा, हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा। निर्लय आप ही लीजिए और चलिए सोनू निगम और अलका याग्निक जी ये दोनों मिलके आपको ये बयां सुनाते हैं कि सांस रुक जाती है या नहीं।

कि तुम मेरी बाहों में हो। अलका याग्निक जी और सोनू निगम जी मिलके आपको ये शानदार द्वैत सुनाए नदीम श्रवण के साज पर, और पेश हुआ फन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म जीत में से निकाल कर हमने चलाए। उम्मीद है यह लवली गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। और ये सांस लेने का सिलसिला की बात हमने की ना, अब इसकी निर्णय आप ही लीजिए कि कैसा हुआ होगा, कैसा होना चाहिए था। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलिए फिल्म क्रिमिनल की ओर जाते हैं। फिल्म क्रिमिनल तो आपने अवश्य देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म क्रिमिनल में से निकाल रहे हैं और ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

फिल्म क्रिमिनल में से निकाले हैं सोनू निगम नहीं कुमार सानू का ये द्वैत अलका जी के साथ हम आपको सुनाए हैं। चलिए एक गीत हमने और प्लानिंग में रखे हैं और वो गीत है कि प्रेम प्यार मोहब्बत में कितनी हसरत होती, कितनी खुशी होती है, कितनी खुशियाँ लोगों को मिलता है, कहाँ तक सच है कहाँ लेके झूठ है, ये दोनों साहिबान आपको मिलके सुनाएंगे, यानी कि कुमार सानू और साधना सरगम, ये दोनों इसके बारे में आपको सुनाएंगे। बस सुनिए।

साधना सरगम के साथ। जी हाँ, साधना सरगम के साथ कुमार सानू आपको सुनाए नदीम श्रवण की लिखी हुई गीत, नहीं बजाई हुई गीत, समीर की लिखी हुई गीत। जी समीर की लिखी हुई गीत और नदीम श्रवण ने बजाए हैं। चलिए कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं। आप चाहे जहाँ भी होंगे धरती पर, प्रेम प्यार मोहब्बत तो हमेशा होता है, चाहे धरती पर जहाँ भी होंगे। तो यही कहानी अलका याग्निक जी और कुमार सानू मिलके दोनों आपको सुना रहे हैं। बस ध्यान से सुनिए।

हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। ये प्यार मोहब्बत की दास्तां आपने सुने फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। लेकिन किशोर कुमार जी ये कह रहा है, आपने तो दिल के बातें की हैं, लेकिन मैं दिल से तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही तरफ का है। किशोर कुमार जी आपको सुना रहे हैं, सुना बस इस तरह से आ रहा है एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी, आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए इस तरह से। गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा यहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन किशोर कुमार जी भी तारीफ करने से चुकता नहीं है, तारीफ ही तारीफ लीजिए। एवरग्रीन किशोर कुमार एक बार फिर से तारीफ की तारीफ, तारीफ ही तारीफ।

बस आपने किशोर कुमार जी की तारीफ सुनी ना, फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर, हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, फिल्म का नाम है जंगल में मंगल, उसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। प्रेम प्यार मोहब्बत में कसमें भी खाते हैं, जी हाँ, पता नहीं आप कभी कसम खाए होंगे या नहीं, बस इसका निर्णय आप ही लीजिए या बसलेस आप ही कीजिए, मतलब लीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ ये कसम खाने की सिलसिला।

वाह क्या बात है अलका जी और उदित नारायण मिलके ये द्वैत आपको सुनाए हैं, ये कस्मे खाने की बातचीत। तो मुकेश जी कह रहा है कि उन्हें तो थोड़ा डर लग रहा है, प्रेम प्यार मोहब्बत में मुकेश थोड़ा चंट है, तो वो कह रहा है और क्या कह रहा है, चलिए हम आपको सुनाते हैं।

मुझे रात दिन ये ख्याल है, फिल्म उमर कैद में से निकाले हैं। निकतिन इन सस्तक का ये गीत इकबाल कुरैशी के साज पर हमने पेश किए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, लेकिन मैथी मुकेश जी के बाद हम ये गीत और आपको सुनाएंगे। जी हाँ, विज्ञापन से पहले चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

जानम देख लो दूरियां, उरित नारायण जी आपको सुनाई ये शानदार गीत फिल्म वीर जारा में से निकाल कर हमने पेश किए हैं। इसका म्यूजिक डायरेक्टर संजीव कोहली, लेकिन ये गाने जो हैं इस फिल्म का, ये इस फिल्म का के गाने कभी मदन मोहन जी ने बजाए थे। तो मदन मोहन जी संजीव कोहली का पिता है, जी हाँ, यानी बाप मदन मोहन, बेटा संजीव कोहली। तो बरसों बाद मदन मोहन के ना होने पर संजीव कोहली ने वही गाने के नए धुनों में और नए तोड़ मरोड़ के नए साज में सुनाए हैं आपको। इसका एक पूरा सीडी है किस तरह से गाना संजीव कोहली ने बनाकर, अपने पिता का गाना बनाकर और नए फिल्म में डालने, कभी आपको सुना देंगे ज़रूर। चलिए

मित्रों, आपको आज वो बात बतलाने जा रहा हूं जहां पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यानी मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। मित्रों, इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जिस प्रकार मित्रों, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मित्रों, बार बार मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। आप भी, मैं भी, सभी लोग मित्रों, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। मित्रों, आज में जी ले,

मित्रों, कल घर को जाना है, मतलब सभी लोग दुनिया छोड़कर एक दिन जाएंगे, यानी हम सभी मरेंगे एक दिन। कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं। गरीब, धनवान, ताकतवर, दुर्बल, सभी जाएंगे। तुम भी, हम भी। मित्रों, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुराई कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो जो दुख सुख आपको मिलता है, ये किसी के कारण नहीं है। कभी कभी हम उंगलियां दिखाते हैं उनके कारण, वो कार्रवाई से ठीक है, मगर आपका कर्म के अनुसार सब कुछ यहाँ मिले है। तुम्हारे करतूतों के कारण दुख सुख प्राप्त हुए है। मित्रों, और जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच, ध्यान करना, सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में आपको खोज लेगा, आपको खोज लेगा। ऐसुकुयू भगवान कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हैं, ये भगवान बोलत है। मित्रों, श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, उनकी शक्ति कण कण में निवास करते हैं। भाई बहनों, छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट अनुभव कराता है। जैसे आपको दुख किसी ने दिया, मारपीट कर दी, तो आप रोते हैं, भगवान हमके मार दे। आप कहते हैं, देखिए भगवान तो के का करियो, लुकू सहंगा दो दू नंगाइयो। तो ऐसे मुर्गियाँ भी, ऐसे बकरियाँ भी, सभी लोग को पीड़ा होती है। मित्रों, इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना, किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना है। किसको? ईश्वर को कष्ट देने के समान है। तो सबसे मिल कर रहो, और ना सिर्फ बोलते रहो हम तो सबसे मिल के रहीला, हाँ हम किसी के ना देख के जरीला। तरवे यूना एस्तमांग दो सबके देख के जरे है, अनभली मनावत है, पसो है खबरदार। मित्रों, दीपक का जीवन इसीलिए, सुनिए, दीपक का जीवन, दीपक मतलब दिवाली, इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है, दूसरों के लिए। मतलब आप भी दूसरों के लिए जिए ना, अपना भलाई करिए, दूसरों के भी भलाई करिए। मगर हम दूसरे के काहे भलाई करी, पहले वापन करी। मित्रों, ठीक है, करते रहो, जैसे जिए चलते रहो। हमारी आस्था की प्रतीक्षा तब होती है मित्रों, जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कुछ भी ना मिले फिर भी भगवान को धन्यवाद देते रहना। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आपके विचार होंगे दोस्तों, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीचे आओगे, नीचे आओगे। यो फादों, और
अच्छे विचार रखोगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे मित्रों, ऊंचाई पर जाओगे।

मित्रों, विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। क्या बना रहे? खोने का डर। मित्रों, और भगवान कहते हैं, चार वेदों का अर्थ नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, अनात्रो भी, मगर मित्रों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मनुष्य समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म यानि मतलब जान ले तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा, तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा मित्रों। मगर हम तो कोशिश नहीं करते हैं जीवन के मतलब समझने के लिए, सोचते हैं खाओ पियो मस्त रहो, मिली स्वीती, पैसा है, सब कुछ है, ये बात नहीं है दोस्त, बात ऐसे नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, जैसे आप और हम करते हैं। अरे बप्पा मर जाइए तो का करब, मैया रे मैया है। तो जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। फर्क सिर्फ यही होता है मित्रों कि हम जान नहीं पाए हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या नहीं थे, कहाँ रहली हम पिछले जन्म में, यही तोरिया हम लोग ना जान पाएला, तभी तो दुख होवे है मित्रों। मगर भगवान फिर भी कहते हैं ना कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छाई तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है मित्रों। मगर हम सोचते हैं कि भगवान तो हमके ना सोचत है, भगवान दूर हो गए हमसे, ऐसी बात नहीं है मित्रों, ये बात नहीं है। मित्रों, इस भजन को सुनकर

मित्रों, कब मुलाकात आखिरी हो जाए, इस भजन को जरूर सुनिए। आप पूरे भजन को सुनना। धरती पर, दोस्तों, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य, दोस्तों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ऊंचा नीचा, जाति पाटी, सब अपने कर्मों से बनता है मित्रों। कुछ पाना है, ध्यान करना, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, दूसरों पर नहीं, अपने पर भरोसा कीजिए और परमात्मा पर, क्योंकि सहारा कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं दोस्तों। और धर्म, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मित्र, गरीब है या अमीर, ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, ये मायने रखता है। ये मतलब की बात है मित्रों, ये मतलब की बात है। और आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ध्यान करना, कि आप क्या है, बल्कि ये इसे तय होता है कि आप, मित्रों, कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता

मित्रों, इस गीत में हमने बतलाया है कि ना जाने कब आखिरी रात, कब आखिरी बात, कब आखिरी मुलाकात इत्यादि इत्यादि हो जाए। मतलब है कि जब दिन भर आप अपने पति पत्नी से, पति पत्नी से, बाल बच्चे किसी से भी झगड़ा करते हो, खूब झगड़ा किया, मस्त धड़ाधड़, रात को सोने जाओ तो बोल दो कि देखो खूब झगड़ा किया है हम लोगों ने, मगर आप सोने जा रहे हो, आराम से सोएंगे, आ राम राम आ, तो आराम से सोएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब झगड़ा खत्म, कल सुबह जब जागेंगे फिर से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों, मगर रात्रि को सोने से पहले हमेशा झगड़ा को सलाह कर लिया करो, क्योंकि ना जाने उस रात आखिरी रात, उस रात आखिरी बात, उस रात आखिरी मुलाकात हो गई और एगो टपक गए सवेरे और झगड़ा से गई ले सूते, दन हैप्पी एंड खरू, तो प्रॉब्लम बहुत बड़का प्रॉब्लम आपको मित्रों। खुशी के लिए काम करोगे, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी मित्रों, खुशी जरूर मिलेगी। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, ध्यान करना, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छे चीजें आपके जीवन में वापस आती है, हाँ वापस आती है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये निश्चित बात है, ये प्रकृति के नियम है मित्रों, यही प्रकृति का नियम है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति मित्रों, यही सच्ची संपत्ति है। हाँ, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने की, ध्यान

0: अशांत हो जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। कई बार आप अपने ही नुकसान कर बैठते हो और सोचते हो कि हम का कर बैठली है, तो हम दूसरों को दोष देते हैं। मित्रों, दूसरों को दोष देने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या बोलने जा रहे हैं, व्हाट हा एक्सैक्ट, क्यों कहे के हम ऐसे बाटी काने की नित खबून से जैसे नॉर्मल रहल जाए प्यार प्रेम से, क्योंकि कल हम भी आप भी तो मरेंगे, तो वारों दी प्रॉब्लम हम ना समझ पाए हैं कि प्रॉब्लम हुआ काहे के मित्रों, काहे के
1: एक

मित्रों, भगवान कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। आप बचते हो क्यों? आप धड़ाधड़ क्रोध करते हो मित्रों, कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें, कोशिश करें, मुक्ति करें, और चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है। कोई आपको कुछ बोले, चुप रहो, वो खुद समझ जाएगा कि वो बेकार को बक रहे हैं। तो चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। माफ करना और ना बोलना कि हम ना माफ करा मीने हो फरकीफें, तब मरो लेके अगले जन्म में कहाँ जइयो का करियो पता ना है, ये भगवान जाने। तो माफ कर दो, का हो जाए तुम्हार कुछ थोड़ा लाश हो जाएगा, आप जीत जाओगे। तुम में कामियां भले ही हजारों हों, गलतियां भले ही हजारों हों आप में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो मित्रों, खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने

अहोनर यानी अच्छा रखते हो। जितना सुनिए, जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रों, जब भगवान आपको कुछ देना चाहता है ना, तो पहले इधर उधर सब बिखेर देंगे, पिसलवा इधर उधर फेंक देगा। कोई देखेगे तुम्हें वो सब उरी है तुम्हें वो क्या कहते हैं, खदेलत है। जब आप घबराओगे नहीं, अच्छाई से रहोगे, प्रेम से, तब धीरे धीरे भगवान आपको सब देने लगेंगे। तो आप सोचेंगे हैं ये कैसे, हम तो इसे ना मंगले, हम तो ये कमोना कर्म फिर भी हमके मिला था। सब भगवान की खेल है मित्रों। कोई समझ पाया है कि आप ही समझोगे, हैं? नहीं समझ पाओगे मित्रों। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है मित्रों, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। और ना जैसे आप हैं, अच्छा आप नहीं, आपके बगल वाले होंगे, तो छोड़ो आप नहीं तो आप सत्य की राह पर चलते हैं मित्रों। तो मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका भाग्य आपके हाथों में है मित्रों। गोरे में कहे गए हैं कि द रेहिसर फाइ तुकोम्स ऑफ यू फॉर्म द लीफ दैट बेन यव और ना कोई और। सत्य से मित्रों ध्यान करना, हम का बोलत हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। आप तो जानते हैं, आप तो करते हैं ना छल कपट वगैरह, चोरी चपाटी, फ्रॉड, लूटमार, नहीं तो आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको आपका कमाया हुआ धन सुख देंगे। और जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते मित्रों, तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। तो आप क्यों सिद्धांत को बदलेंगे, रास्ता बदल लो, दूसरा तरीका से दूसरा काम ढूंढ लो, हैं? उसमें क्या बात है मित्रों। तो गलत काम मत करिए, नगो दू लौलो सानी अंदर से प्रॉब्लम।

मित्रों, जब आप भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम आपन जीवन आपके हाथ में सौंप दे ली, तो उस वादा को पूरा करना भी चाहिए, न बाद में दूसरों को गाली देने लगो, अपने खुद करने लगो। तो भगवान की कहा है, बोले कि भगवान तू हमारे लिए सब कर, खबरदार लिलाव लाव चीज ना बोला करो। मित्रों, किसी के संगत से आप ध्यान करना, हम क्या बोलते हैं, किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। मित्रों, आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। और एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप नहीं, हम काहे ओकरे वाला ली, हम काहे उसे सब कुछ सीखी। एक मैन बेहतर दान हैम ऑफ दान हार जू लाओ, खोपड़ी ठीक ना है तो अच्छा चीज देखो तो उससे सीख लो, सीखो। उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं करो, नहीं तू ही बर्बाद होंगे। क्या होंगे? बर्बाद होंगे। देखो ना आज तक कहाँ पहुंच लो है। आपका बात नहीं, आपका बात हम ना बोलत हैं। अभी नाराज हुई है कि परदेशी बाबा हमके का बोलत है। ऊ जो तुम्हारे पीछे खड़ा है ओके हम बोलत है। मित्रों, और संबंध बड़ी बातें सुनिए, संबंध बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अपने भौजी देवरनिया या कोई भी रिश्तेदारी को बड़का बात ना सुनाऊ, तू धनवान है तुमको बड़का बात ध्यान गिर जाइयो है, रावण भी गिर गए ना, तो तू बचियो। आपका बात नहीं बोलत है, क्षमा आपका नहीं, किसी और के बात बोलत है। मित्रों, और यदि सब कुछ खो कर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, ध्यान करना, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। कर्म ही सबसे बड़ा धन है। मित्रों, कर्म करते रहो, करते रहो, कर्म ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, और ना ही कुछ और, जैसे लोग बतलाते रहते हैं, कान का लोग आप लोग को सिखाते रहते हैं। मित्रों, खबरदार इन सब चीजों से बच के रहना, बच के रहना।

मित्रों, हम अनेक तरह की भजन गाते हैं, समझाने के लिए वो खुद भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। मित्रों, परमात्मा कहते हैं कि उपदेश देते हुए कहते हैं भगवान, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। आप और मैं कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, जिससे हमारा अगला जन्म या भविष्य बनेंगे, और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कोई जरूर कर्म करो, अच्छा कर्म करते रहो, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना जो कर्म करते हैं उसका परिणाम ना सोचो कि का मिली का ना मिली, वो छोड़ दो। उसके किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करते रहो। कौन फल मिले या ना मिले, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिली है। एगो पुराना कहावत, जो बोएंगे वही काटेंगे आप ना। आम के पेड़ बोइयो तो कहाँ रोज के फूल मिली है, समझ लेना मित्रों। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं भगवान कि अपने कर्म हमेशा समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो मित्रों, और बाकी फल के चिंता मत करो। और उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो, भगवान बोलत है कि हमको समर्पित कर दो सब जो करत बाटे आप। इस मार्ग को अपना कर मित्रों तो मुझे प्राप्त कर सकते हो, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, भगवान बोलत है, हम नहीं बोलत हैं। तो अच्छा काम करो फिर भगवान के प्राप्त करो, और बुरा काम करो तो फिर राक्षस बनो ना, मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। भगवान बोले अच्छा कर्म करने से तुम मेरे प्रेम के भागीदार बनोगे, और का चाहिए आपको है, इससे अच्छा चीज ना और कौन सी मिलेगा आपको। मित्रों, हम तो कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आप भी कोशिश करिए, भगवान जाने आगे का होगा। मित्रों, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है मित्रों, कल वो किसी और का था, ध्यान करना, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे, कोई आपका साथ ना दी तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। अनुदे भगवान सबसे बड़ा मित्र है। खुशी आजादी पर निर्भर होती है मित्रों, आजादी, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं, कितने मेहनती हैं, कितना मेहनत करे बाटे तू।

मित्रों, इस भजन के द्वारा मैंने आपसे बताया कि उमरिया बीती जाए, उमरिया चलत है, घड़ियां टिक टिक टिक टिक चलत है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पता है कि आगे में एको बड़का होल है जो इंतजार कर रहे थे, वही में गिरेंगे। जितना खेत कमाई है सब यही रह जाएगा, सिर्फ एक ही छोटी सी जगह दुई मीटर लंबा हो या ताकत ब्रेथ है और गहराई है, या तुम्हें आग में झोंक देंगे, बारबकी कर देंगे, बस खलास। तो मित्रों, ये जो हमने आपसे बतलाए हैं इसे कुछ सीख लो, सीखो, हम भी सीखते हैं। हम बोलते हैं मैं, फिर भी हम सुनते हैं क्या बोलत बाटी, बाद में हम सुनत बाटी भी क्यों, बोलते समय में ध्यान न रहे कि क्या बोल ली, खोपड़ी में आवे बोल देवत हैं तो बाद में सुनत हैं, तो हम भी जीवन में उतारने की कोशिश करत हैं। तो मित्रों, आप भी जरूर कीजिए ना, जीवन में उतारिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवाते रहना जो आपसे मिल चुके हैं या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, तो हम आपसे मिल करके बहुत खुश हैं, भगवान आपका कल्याण करे, खुशी से रहो, बुराई छल कपट किसी से ना करो, चोरी चपाटी ना करो, आपके सामने आएगा। मित्र, प्रेम से रहो, विश्वास के साथ रहो, भगवान पे भरोसा करो, कल्याण हो, कल्याण हो।

0: की बातें याद करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें वो सिखाती थी तुम्हें।
1: बेटा आओ आओ, सब मिलके वो गाना गाए जो तुम हमेशा अपनी माँ के साथ गाते थे। गाओगे ना? आओ गाए।

प्यारे, मैं तुम्हें क्यों मना रही हूँ, तुम्हें क्यों बुला रही हूँ, तेरी बार बार मिन्नतें क्यों कर रही हूँ। तूने अपने नैनों के माध्यम से जो मुझे पिलाई, उसका नशा इतना बढ़ गया कि मेरी प्यास बढ़ती ही चली गई।

एक बार फिर यहाँ से आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है। इस बार यहाँ से आपके स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आरंभ करने को जा रही हूँ। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय आत्माओं, प्रिय भक्त जनों, स्वीकार कीजिए सेविका शांता के प्यार भरे नमस्कार। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। सभी को हार्दिक से स्वागत है स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में। आरंभ को करने जा रही हूँ देन हाखलेस कफेन फोर पार्क से। देन हाखलेस कफेन फोर पार्क से बाव एंड अंडरहाउस बद्रेव, बाव एंड अंडरहाउस बद्रेव, इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण जी, इनके तरफ से हम यहाँ से आरंभ को करने जा रही हूँ हनुमान चालीसा।

जय जय हो उदित नारायण जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण की है। आज के प्रोग्राम में हनुमान चालीसा के साथ आरंभ किया गया है। जो शुभ कार्य आज कर सकते हो, जो शुभ कार्य आप आज कर सकते हैं, उसे कल पर ना छोड़ो। कौन जाने कल कब आएगा, आए भी तो ना जाने उस समय परिस्थितियाँ कैसी होगा, उस समय परिस्थितियाँ कैसे होगा। तो जो आज करना है तो अभी कर लो, जो अभी करना तो अभी आज कर लो। पेश किया गया है दनाखलाइस का फिल फोर पार्क से ऑनर हाउस बद्रेफ। ऑनर हाउस बद्रेफ इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण, इनके तरफ से हनुमान चालीसा के साथ आज स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आरंभ किया गया है। दनाखलाइस का फिल फोर पार्क से इस बार है आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा खरोथ हांडल बेफे के साथ सुनेंगे हम गणेश जी की आरती।

गणेश जी की सुंदर सा भजन यहाँ से हमने श्रवण की है, पेश किया गया है दनहा खलैस कफेन फोर पार्क से आनंद अंजू शर्मा खुरोधान बेफी के तरफ से। दनहाख से श्रीमती लन बाबू राम जी के तरफ से हम यहाँ से श्रवण करेंगे एक बार फिर सुंदर सा गणेश भजन। बेहतरीन कल के लिए, बेहतरीन कल के लिए आज को बेहतर बनाना पड़ेगा।

अति सुंदर अति सुंदर। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपके तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। पेश किया गया देनहाख के रहने वाली श्रीमती लेन बाबू राम जी की तरफ से। देनहाख लाइस कैफे इन फोर पार्क से इस बार है बाव एंड ओनर हाउस बद्रेव। बाव एंड ओनर हाउस बद्रेव इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण, इनके तरफ से सुनेंगे।

सुंदर गणेश भजन आपके लिए पेश किया जाता है आपका स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से हम यहाँ से आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में सार है, शब्द शब्द शब्द ऐसा कहो जिसमें उपजे प्यार। पेश किया गया है दनाखलास का फैन फोर पार्क से बॉब एंड ऑनर हाउस बद्रेव, इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त देव नारायण के तरफ से हमने श्रवण की है। आपको लेकर चलते हैं दनहाख के रहने वाली श्रीमती लिलियन मोतीराम जी के तरफ से शुभ प्रभात कहते हुए सभी को।

सुंदर अति सुंदर, चलो खुशियों का जाम हो जाए, लेके बप्पा का नाम कुछ अच्छा काम हो जाए। पेश किया गया है दनाख से श्रीमती लिलियन मोती राम जी की तरफ से, सभी को एक शुभ दिवस, मंगलमय जीवन, मंगलमय जीवन और मंगलमय दिवस पेश कर रही है। सुरीनाम लिफोर्नो मेन कंडाम हुक इंदिरा गांधी वैक्सीन श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर खूबसूरत दिवस में भजन माला कार्यक्रम में शुभ प्रभात कह

हे दादा गयाधन, श्री गणेश श्री गणेश आप सभी को गणेश जी की कृपा से हर दिन फलदायक हो हम सभी का पेश किया गया दिन हाखमा का इस रात नंबर 6 से हिंदू बासो स्कूल फाहुन फरेनखेन अलखमेन हिंदू ऑनरवेस नीदरलैंड के तरफ से आगे चलते हैं सुनने के लिए हेकनुटरस्ट्रैट देना हेकनुटरस्ट्रैट नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांगुरबिन के निर्देशों में श्रद्धा भक्ति के साथ नमस्कार।

अति सुंदर, एक बार फिर अति सुंदर, अति सुंदर। प्रथम पूज्य भगवान गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा से आपका हम सबका दिन सुखद में और मंगल में रहे। पेश किया गया है बेनहाखे कुनीतो स्त्रत नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार। संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबिन के निर्देश में है, आपको लेकर चलते हैं इस बार रोटरडम। रोटरडम हॉगवलीट टेक्सासवेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति, संस्था हिंदी सेवा संघ, श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक माकर स्ट्रात सेशन फेयर तक से, श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से शुभ प्रभात और एक शुभमय दिवस, एक शुभमय जीवन हम सबको अवश्य इनके लिए प्रार्थना करता है।

मंत्र पुष्पांजलि यहाँ से हमने श्रवण की है। हर सुबह एक नई शुरुआत होता है, हर सुबह एक नई शुरुआत होता है, एक नई आशीर्वाद, एक नई आशीर्वाद, एक नई आशा है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं पर जागने पर मिलता है। पेश किया गया है रोटरडैम होपफुली टेक्सास वेक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर से और रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक मार्केटस्ट्रैट से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महाथम जी की तरफ से ये सुंदर सा पुष्पांजलि मंत्र पेश किया गया आपके लिए। फाहोन रेडियो की स्टाफ डायरेक्सी पर्सोनल सभी फ्राइवेलर्स की तरफ से मेरे प्यारे सुनने वालों तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते

मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको यहाँ से एक बार फिर स्वागत कहती हूँ। 8:08 गुजर गया, ये भी एक कमाल की बात है ना। अक्सर ऐसा होता है कि 9:09 गुजर जाता है, 10:10 या 10 मिनट बाकी है, 10 बजने में इस वक्त है, 8:08 गुजर गया। कभी कभी ऐसा ध्यान पे आ जाता है दा दत्त खून सो पैरेलल लूप एंड दैट्स सो फैन ओम ओम ओम ओम आंत खेफन। एक बार फिर यहाँ से शांता जी की प्यार भरे नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। और कहती है कि जिंदगी दो पल की है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे सुनने वालों, कि जिंदगी दो पल की है, मजे में जी लो मेरे दोस्तों। वक्त वक्त की बात है यहाँ पर, वक्त वक्त की बात है सब, इसलिए कल को छोड़ो और आज में इस पल में जी लो

जाना तुम्हारे प्यार में क्या क्या ना बन गया है, और इस दिल की दास्तां बड़ी अजीब होती है दोस्तों, इस दिल की दास्तां बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुशी नसीब होती है, आपको पता है ना। और किसी के पास आने पर खुशी हो ना हो, पर दूर जाने पर बड़ी बड़ी बड़ी तकलीफ होता है।

गया, होता है होता है। और कहते कि तेरे दिल में मेरी सांसों का पन्हा मिल जाए, तेरे दिल में मेरी सांसों का पन्हा मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। अधूरी सांस थी, अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है। जब से आ गए हैं बस चांद पूरा है, और अब पूरे हैं हम। देखो ना कितने अच्छे बात है।

इंतजार रहेगी, आ जा रे। सुन ले मेरी पायलों की झनकार, और कहते हैं कि तुम, हाँ तुम खफा हो गए तो कोई खुशी ना रहेगी, तुम्हारे बिना चिरागों में रोशनी ना रहेगी और दिलों में जान ना रहेगी। क्या कहे, क्या गुजरी इस दल पर, जिंदा तो रहेंगे पर जिंदगी ना रहेगी। पूछो उन

कि मैं प्यार में जो हो जाता है दिल में जो कुछ कुछ होता है ना, तो ऐसे ही बात ऐसे ही गीत दिल में उभर आते हैं। आलर दाख्स दिंगन सोमसेत खुलक इन द क्लेंस्ट दिंगन। Bijvoorbeeld een kop koffie in de ochtend, de zon op je gezicht, een fijne wandeling, een goed gesprek of gewoon even niks. Juist deze gewone momenten maken het leven bijzonder.

खूब फरमा दिए है मेरे हम सब के मोहम्मद रफ़ी जी ने। आज के कलेक्सी आपके लिए हम शामिल की है फिल्म ससुराल से दिल अपना अप्रीत पराए, फिल्म भाभी नया दौर और राम और शाम से। इन फिल्मों से आज आपके लिए मज़ेदार गीत चुनकर और पेश की गई है।

0: ये इंतज़ार जिनका था वो आ गया है। तो यहाँ बहुत प्यार के साथ हम सभी मिलकर श्री पंडित राजकुमार महातम जी को हार्दिक से स्वागत कहती हूँ। पंडित जी आपको स्वागत है, नमस्कार हो, और आप आकाश में हो।
1: धन्यवाद जी, नमस्कार। हरि ओम महादेवम नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देव सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपितवाम भागम पाणु महासायिक चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च वैभवाय च नमः शंकराय च मस्करा च स्यूतराय च मुक्षुक्षुरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जाकर यथाविक मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुंचे। खास करके रेडियो फान को जो मालिक हैं मैं उनके भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ जो समय प्रदान किया है धर्म प्रचार करने के लिए। हम आप कितना ले रहे थे हर बुध की तरह आज भी संता जी ने रेडियो फोन को माध्यम से हमें आप कितने अच्छे ढंग सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आकाशवाणी के सुनने वाले भगवान का अनुकंपा कृपा हुआ जा करके आपके बीच में मैं कुछ ना कुछ धर्म संदेश आप तक पहुंचा सकूंगा। तो आकाशवाणी के सुनने पे हमें आपको भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। हम वहां भी जानते हैं ना हमारा आपका प्रेम परमात्मा परमात्मा के प्रति अटूट और असीम बना रहे। भाग के उदार के लिए और उसे ऊपर उठाने के लिए ईश्वर स्वयं भक्त के स्तर तक उतर आता है। उसे ज्ञान रहता है कि उसके भाग को क्या चाहिए और वो सब उसे कब और कितनी मात्र में दिया जाए। मांगो नहीं, आकाशवाणी के सुनने वाले मांगो नहीं, यदि तुम मांगते हो जाओगे तो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्या क्या भगवान उस सबरी के पास कितनी, क्या परमात्मा जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, कौन सबरी माँ कभी कुछ नहीं मांगा नहीं पहुंचा, क्यों उन्होंने जटाओ को जिसने मरते समय भी कुछ नहीं मांगा अमरतत प्रदान नहीं की। इस प्रकार यद्यपि दशरथ ये चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार राम के हाथों हो और उन्होंने राम से ये मांगा भी, किंतु उन्होंने दशरथ की अंतिम संस्कार ना कर जटाओ की अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। इसका कारण यही था कि जटाओ ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। यदि ईश्वर से हमारा बाप का यदि ईश्वर से तुम्हारा ये प्रार्थना है कि हे प्रभु मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, मैं तो केवल आपके मांगता हूँ, आप मुझे प्राप्त हो। किस प्रकार महाभारत को ले जाते आकाशवाणी के सुनने वाले अर्जुन पहुंचे, कौन दुर्योधन, और अर्जुन पहुंचे कृष्ण भगवान के पास। वहां पर कृष्ण भगवान लेटे थे ना और अर्जुन जा यानी दुर्योधन जाके प्रथम पहले उनके सिर के वहां पर खड़े थे। विलंब में पहुंचे अर्जुन कृष्ण भगवान को चरण के आगे। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन क्या चाहिए मांग लो। दुर्योधन ने कहा, प्रभु मैं बहुत विलंब से यानी मैं बहुत जल्दी आया। अर्जुन तो विलंब से आए हैं, क्यों उनसे आप बात कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान कहे, हे दुर्योधन, अर्जुन हमारे चरण के आगे थे, पहले उनको मैं देखा, कहने का थे अगर हम आप कुछ प्राप्त करना है तो हमें कुछ झुकना है। और वहां पर क्या, कृष्ण भगवान ने कहा मांग लो। तो दुर्योधन ने क्या, सेना बहुत ज्यादा मांगा। और वहां पर कृष्ण भगवान कहे अर्जुन से, अर्जुन कहे प्रभु मैं आपके मांगता हूँ, आप हमारे पास रहो। कौन कहे, सेना जो है बहुत कम है। कृष्ण भगवान के अर्जुन से, लेकिन अर्जुन कहे प्रभु आपके मैं मांगता हूँ। कहने के तात है, परमात्मा हमारे साथ जो है तो हमारे मंगलमय होगा, भगवान कृपा कृपा होगा आकाशवाणी के सुनने वाले। और भगवान से हमें कुछ नहीं मांगना है, भगवान जानते हैं हमें क्या कमी है। हम उपमा देते हैं, जैसे छोटा से पौधा बड़ा कोमल होता है ना, उसकी रक्षा के लिए बादल पानी बरसता है ना, उसके रक्षा के लिए बादल पानी बरसाते हैं और उसके पोषण करते हैं। पौधा वर्ष के लिए बादल के पास नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार एक शिशु में तो इतनी शक्ति ही नहीं होती कि दूध पीने के लिए खिसकर वो माँ के पास जाए, किंतु माँ उसके पास जाती है, दूध पिलाती है और उसका पोषण तथा रक्षा करती है। इसी प्रकार परमात्मा भगवान भक्त के पास आता है, उसकी सभी इच्छाओं पूर्ण करता और भक्त जो चाहता है उसे देता है। इन सभी प्रार्थनाओं में सबसे आवश्यकता तत्व है भक्त, भक्त का प्रेम। ये प्रेम नाम प्रसूत है, यदि प्रेम नाम प्रसूत है तो ईश्वर प्रेम प्रसूत है। इसलिए कहा गया है आकाशवाणी के सुनने वालों कि परमात्मा तत्व के लिए प्रमुख आधार भक्त का सच्चा प्रेम है। इस प्रेम के लिए नाम सुमरण आवश्यकता है, नाम सुमरण भी सब सार्थक है। जब वो तन्मय से किया जाए अत नाम सुमरण अपने में स्वयं भगवान पर अपने में स्वयं भावना प्रधान है। और इस सब के लिए भक्त के दृष्टि इच्छा शक्ति आवश्यकता है। श्री भागवत गीता कहती है कि तुम अमृत पुत्र हो। अमृत पुत्र के क्या अर्थ है आकाशवाणी के सुनने वाले, कोई भी व्यक्ति अमर पुत्र कब बन जाता है, जो भक्त क्षेत्र और क्षेत्रीय के अंतर को भली भांति समझ लेता है वो इस पद का अधिकारी है। हमें इस तत्व पर तनिक गहराई से विचार करना चाहे कि भौतिक शरीर तो इस पे ध्यान करना, ये भौतिक शरीर तो मल मूत्र से भरा है, ये आत्मा के लिए मात्र एक वाहन है, भवसागर पार करने के लिए ये शरीर हमारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। यदि तुम इस भौतिक शरीर की आवश्यकता प्रकृति का पता लगाओगे तो इसके प्रति तुम्हारे अपने आप कम हो जाएंगे, फिर भी तुम अपने उदासीन भी नहीं कर सकते। ये साधन है जो हमें अपने कर्तव्य के पालन के लिए प्रदान किया गया है, अतः इसलिए देख रेख भी अवश्य है। साथ ही तुम्हें इस सात में ही वास्तविकता से भी परिचित होना चाहिए कि ये साधन है साधन नहीं है। जब तुम इस क्षेत्र के विषय में और खोज करोगे तो तुम्हें इस शरीर की आवश्यकता तथा दोनों प्रकार की प्रकृति का ज्ञान होगा। आकाशवाणी के सुनो, जो प्रेम ईश्वर को समर्पित किया जाता है निस्वार्थ होना चाहिए। ईश्वर से प्रेम करने के पूर्व तुम्हें अपने से प्रेम करना चाहिए। स्वयं से प्रेम करने के उपरांत तुम्हें समाज से और फिर संपूर्ण विश्व से प्रेम करना चाहिए। यदि तुम्हारे प्रेम निस्वार्थ नहीं है तो तुम्हें विश्व से प्रेम नहीं कर सकते, और यदि विश्व से प्रेम नहीं कर सकते तो परमात्मा तुमसे बहुत दूर रहेगा। तुम उससे कैसे प्रेम कर सकोगे? इसलिए पहले जगत से प्रेम करो और आगे बढ़कर जगदीश्वर से, जहाँ प्रेम है वही घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। जहाँ घृणा का भाव है प्रेम मिलेगा। केवल दो वस्तु है, प्रेम और घृणा। घृणा होगी तो तुम्हारे अहंकार बढ़ेगा, प्रेम तुम्हें करना और कृपा प्रदान करता है। भगवान की इस सृष्टि में मानव का स्थान सबसे ऊंचा है। वही बात रामायण में प्रभु राम लक्ष्मण से कहे हैं, सम्मान प्रिय सम उपजा सबसे अधिक मनुष्य मोहे भावा। वही बात प्रभु राम कहे लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, सब जो मैंने बनाया लेकिन मानस मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हारा प्रेम समाज और विश्व के प्रति विकास हो, इसके लिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए। शिशु का प्रेम सबसे पहले अपनी माता से, फिर पिता से, और फिर परिवार के अन्य सज्जनों से प्रेम करते हैं। प्रेम का विस्तार होता है तो वह अपने मित्र से प्रेम करता है। विवाह के पश्चात वो अपनी पत्नी से और तत्पश्चात अपने संतानों से प्रेम करता है। ईश्वर ने परिवार का स्वरूप ही इसे प्रदान किया है ताकि मनुष्य का प्रेम तक सीमित ना रहकर और आगे बढ़े, धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को अपने प्रसिद्ध में ले आओ। आकाशवाणी के सुनने वालों, हमारे प्रेम विश्व रूपो, प्रेम स्वरूपो, इस रूप में एक स्वयं ईश्वर की पूजा है। प्रेम और सेवा ये सर्वव्यापी है। केवल हरि नाम संकीर्तन द्वारा ही व्यक्ति अपने प्रेम के सीमा का विस्तार कर सकता है। प्रभु नाम के सुमरण द्वारा ही हमारा हृदय उदार बन सकता। भक्ति से बढ़कर संसार में कुछ नहीं, बात आप जानते हैं। आकाशवाणी के सुनने वालों, हम आप ठीक से जानते हैं, साथ कोई साथ चलेगा नहीं। पंछ उड़ गए अकेला, सब साथी संगी छूट गए मेला। फिर से बात दोहरा रहा आकाशवाणी के सुनने वाले, साथ चलेगा ना कोई तेरा, पंछ उड़ गए अकेला, साथी संग छूट गए सब मेला। श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। आकाशवाणी के सुना युवाने द्वारा अपना प्रवचन विराम करने जा रहा हूँ। हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। हरि ओम, शांति शांति, हरि ओम।

मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, यहाँ से मिलकर हम श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी की मुखारबीन से सुंदर सा कथा, और आखिरी में जो दोहा पंडित जी ने सुनाए उसमें कितनी सच्चाई है और कितने आनंद में पंडित जी सुनाए अपनी मुखारबीन से, इसे हम समझें और अपने जीवन में प्रयोग करें तो हम जरूर से आनंद में रहेंगे। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से, सभी सुनने वालों के तरफ से पंडित जी को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है जो अपना मूल्य वक्त निकाल के आए और हम सबके सेवा की है। पंडित जी आपको धन्यवाद, नमस्कार, एक शुभ दिन होवे।

सुंदर सा गीत आपके लिए पेश किया गया है और फिल्म भाभी से निकाल दिया गया आपके लिए सदाबहार गीत आपके लिए पेश हो रहा है आपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से द एनख एख्त जो करोड़ों लोग सुनते हैं इंटरनेट के जरिए से

0: कॉर्सेट,
1: आंखों से चूम लो तू भी। हाँ, ये एक नया नया नया गीत आपके लिए पेश हो रहा है, या न्यू सॉन्ग फ्रॉम 2020 के। और इसको यहाँ पे भी है, न्यू सॉन्ग, न्यू हिंदी सॉन्ग, धड़कन में हो तुम।

लेटेस्ट लेटेस्ट गीत आपके लिए पेश हो रहा है चल तेरा इश्क में। हम क्या कहे विशाल मिश्रा, मिथुन नीति मोहन इस फिल्म में। मूवी का नाम है गद्दार द्वे। नहीं देखे होंगे तो ज़रूर से मौका मिल कर और निकाल कर देखना है। यही दार या यही Stop eens met alles zo serieus te nemen. Het leven heeft al genoeg probleem. Jij hoeft er niet nog eentje van te maken. Ja, jij daar, ja jij, maak je niet om de kleine dingen zelf te maken.

फिल्म गद्दार से आपके लिए पेश हुआ अज्ञानता। मेरे दोस्तों, अज्ञानता सबसे बड़ी चुनौती है। इस दलदल में फंसकर मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो अज्ञानता में मत रहो। अपने आप को कोशिश करो, प्रकाश करो। फॉर दैट इट्स अस ब्रेक इस एट मिस्किन फरस्तांदग ओम ये सेल्फ आफ द फ्रागन हू हैट क्लिंक अस इमान सो इट्स टेके यू सो सेगन एन ऑफ ये दैट leuk zou vinden. Wijsheid is niet alles weten, maar weten wanneer je moet luisteren, wanneer je mag loslaten en wanneer je gewoon jezelf mag zijn.

और दोस्तों जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनिक का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तलाश है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

तो मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

और दोस्तों अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का ये सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं एक बार और आका यागनी कुमार शानू के उरे और हमारे यारो तो हम चलते हैं एवरी ग्रीन कुमार जानू एंड अलका यंगनी।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। तख्त में जो सदाबहार सॉन्ग है और वो है कुमार शानू अलका यागनी का एक गीत, आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

और एक चीज तो हम भी मांगते हैं और पहला बार नहीं बेर बेर हम मांगेंगे हमारे दोस्तों हमारे यारों और वो चीज है रेडियो फहन पिछू लगाए रखना।

दोस्तों अपना रेडियो फाउन का समाचार को लेकर हम और आगे को बढ़ते हैं। बस सुनते ही रहो जो हर मंगलवार को हमारा प्रोग्राम और शुक्रवार को हम लाइव चलाते हैं सूरीनाम की न्यूज से लेकर और देश के समाचार आपको हम सुनाएंगे। देखो भैया एनडीपी के आदमी लोन एनडीपी छोड़ के और जा है भैया, तो सिमोन का बोले हैं एनडीपी फोर्सेतर बोले ओफर फॉर ट्रैक मेर हिबा के और रहमानी की खाद मेंशन है एक दू बोले आदमी है बोले ना खुशियालिम जो चीज हम करीला तो बोले निकल के या लेकिन जनता तो भी कितना खुशियालिम ना भैया जो हमारे देश में इतना दुख है। तो एनडीपी बोले है बीते हुए हफ्ता में बोले कितना प्रोमिनेंट पार्टी लीडर के बोले छोड़ के एनडीपी भग है। सो आज भैया अन प्लीज सो उन फन बोटर से रोमानो मेरहिबा और बोले हैगा पंत बैठे के कोऑर्डिनेट करत रहा और फॉर्मल का ऑफ डीलिंग फोर्सेटर लोनर्स रा महनी बोले ये दोनों छोड़ के अपन लेट मार्च का धर के और बोले चल गए हैं। NDP voorzitter Jennifer Simon zegt dat de dergelijke bewegingen binnen politieke partijen die in de coalitie zitten vaker voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt zij dat er ook personen zijn die terug wensen te keren naar de

सो मार के भैया बस लतूर वेक में खूब चमकाए रहेगो इन फेफ तक यार के औरत और चमकावत चमकावत अपन फ्रिंट से गेल नार गौरबा खान फोर फैरतीर नहीं गौरबा फैरतीर को जो भैया महिया लिखल है और बोले हैगा उतरे में बोले ना से इन खतेदार हाद दौर खबराख बसलोतन से ते फरतरेकन तब बोले फरतरेक कली माती जाए और बोले है स्लाख तो फिर नाम प्लास इन ओ तुम बोले बढ़ गईली तरवेल ओकर फ्रिंतवा जो नबे बहरे खड़ा रहा ओ ही में भैया दुई मिला आयल है दुई मिला आयल है भैया बोले द फरतरख तो बोले पिस्तौल निकाले से दुई मिला और बोले हमार फ्रीन के ऊपर भैया स्लाख तो फिर हम इस इन फुरत एक प्लाट से नहीं मन द मान वही कर दे द मान वही कर दे प्लस से एक तो द फरदाखता हार हास केटिंग फन द फ्रॉ वेग वर्फोल्ग स्टप्ट है ने खरीस्तान दे त्यो उता फिट से बड़ी चोरी हुए भैया पहले मारक त्वेई से होत रहा अब त्यो उता फिट्स बहुत इन है वन जय रूफ सुरीला स्ट्वेट त्यो उता फिट्स के बारे में जाए हमार नानी In de eerste melding werd gesproken over meerdere verdachten, maar uit onderzoek bleek dat alleen één gewapende persoon te zijn. To sanam bhaiya keti pheti pair ke na jaiye hiyan se ye bhauji log ke boli le jaiye nakhu nakhu lal ol kar liyo ontho lal kar liyo lekin khona na pair ke jaiye doblai o balai ke kuch bling bling tang liyo uriya guriya nahi bina mare mara jaiye aise baant be batai re dekho to rofal bhaiya kuch na paave khaslakh de liye me pistol se daag dewe hai abhi okar news aap log ke bataye hain to aise hai bhaiya aise hai सुरीनाम के बातचीत हुए मथुरा का बोले फिर यहाँ पे के मथुरा का बोले मथुरा बोले है सीमोस प्रेसिडेंट बोले हैगा अपरे के बोले बहुत लाख ऑफर करे हैं कि हमार फोर खरेखें फिर यहाँ पे के हमें बहुत स्लेख कासा दे से बोले कुछ ना दे बोले बहुत स्लेख तू स्टंट में बोले हमें दे से देसुआ वो एक मारे देसुआ में तेरा प्रॉब्लम है तब मथुरा बोले मुहा बन कर मुहा हां बन कर बोले मुहा बन कर बोले तू हम लोग के कसूर देवे है बोले प्रॉब्लम हुआ तो एनडीपी रखेरी 2015 तो 2020 में अपरे कर ले रहा जो कर माखत रहा प्लेटफार्म जो रहा भैया लीन प्लेटफार्म तुरंत ऊपर कर दे ले कर्जा ऊपर कर्जा ले ले और बोले चपराई के बैठ गए बाटे अब बोले कि फे यहां पे करी से ई बात बोले है मथुरा बोले है फिर यहाँ पे के बोले है कि एनडीपी रखेरिंग दी ट्वेंटी 2015 एंड 20 अंदर मख्त वास बलेट वार फन ओर्स्प्रॉंग फन दे इसे प्रॉब्लम और बोले है प्रेसिडेंट से बखौने में द स्लाख ऑफर रोल दौर आन तक गिवन कि सिचुएशन हम बहुत खराब हो फले लिए बोले ये स्केस दैट इन 2025 अन हेल मुइलक सिचुएशन हैव ओवरग्रोमेन बोले मार ये हैव सेल्फ दारबे बैदरागन नेचुरली हैवन अल पार्टी in bijgedragen, maar wie heeft gezorgd voor al die schulden die als een strop om onze nek zitten? Ibad Matura bole he, bole he ga een derde van onze begroting gaat naar schulden, 1,8 miljard Amerikaan dollar ke bole hem lo karja baati bole kali karja bhara hai, aw bole karjo to hi loan to le rahe le hai se schulden die gemaak zijn door haar regering jab voorzitter la de na ke parlement ke aw bole upriyude me bole staatsschuld keer op keer stulen badlat rahe le dan moet je je wel van bewust zijn weten beseffen dat van niet erkend moeilijk is, maar herstellen veel moeilijker is. Daarom moet je altijd zorgvuldig beleid uitvoeren en beslissingen nemen die altijd in de belang zijn van zijn Isabaan. Matura ego interview pe, bolise dosto, anewala saniwaar ke. Binnenkort anewala saniwaar ke dosto, hame ego interview programma hai om 1400 uur. 10 oktober ke 10 oktober ke om 1400 uur heb ik een interviewprogramma Ostaad ek Ostaad Maha Ostaad Sunder Hira hiya rahega om 2 baje aur pandit hiya rahega aur aur log hiya rahege sath sath Suriname desh mein Nachaniya Champak bhi hum log sending mila be jo hamara Hindu Vishwa jo hai hamara Hindu Vishwa ke mare mein aap log jano hai Suriname desh mein kitna misbreak hue hai जीप पे सबन भैया ले ले अगरबत्ती ना अगरबत्ती का बोले है वो का बोले है आगे बार बार और कटली

लेई के भांजे हैं और का बोले है नाचे हैं मंदिर में और कटलिस लेई के भांजे और रात के जाई के पर्दों फिल्म बनावे हैं। तो ये सब चीज भैया हम लोग बतिया कि हम लोग के हिंदू धर्म में और लोन्ना के नाच के जो मध्य है वत होत ओकर खात हम लोग उस्ताद को उस्ताद भैया जो हम लोग के पुराना नगारा मास्टर है हम लोग के ढोल मास्टर देवराव रवराज सुरेन का बोले है हीरा सुंदर हीरा चंपा इस लुंडा के नाच वाला आदमी वहां फ्राक कि हम लोग के धर्म में ब्याह शादी में नौता है कानी में कौन ची हो रहे हुए है कौन ची ना हो रहे हुए है सो दैट वो अंबेच ऑफ हेल्थ ने क्रै दीख स्प्रेक खाव दुन वहां निमान फर ने इधर इधर इन इंसन इंसन वार्डन लात मा वी विल वेल ओवर ऑन हिंदुइज्म फर्टेलर व्हाट नामलिक इन ब्रुलोव टेजस लुंडा नाच मुत खान खबर दैट इज हील बलंगरेक वन आर वर्थ इट heel veel misbruik gemaakt, waardoor vandaag nu een heftige discussie is op de sociale media. Dus dat wil ik even doorgeven, beste mensen. Toen zat de zaad hem ook aan Mangila Jai. Mathura vindt dat president Jennifer Simon in haar jaren op verschillende punten ook te kort door de bocht is gegaan. Er moeten keiharde prioriteiten worden gesteld, terwijl bij de verhervorming van de overheidsapparaten ook moet worden aangegeven waar er zal worden bezuinigd. To ye baatjeet hai, hamare pyare, pyare, pyare, pyare, sundar, sundar, janta. जो आपको हम बताते हैं अब देखो भैया कादेंसी जाने मिसिकुआल तो आंदाख मांगे फे यहाँ पे के पॉलिटिकस ऊपर आर्टिस आर्नोल बुकुरु बेहतर बकेत आज कादेंसी बड़का फे यहाँ पे यार भैया बोले फे यहाँ पे volgens hem zijn de personen binnen de leiding van de VHP zogenaamde Bromki Jari tegenwerken, waardoor deze afbrokkelt. Bolle partijleider Santoki Marghe evaluatieperiode maar had ingesteld. Obole haar koers moet aanpassen en dreigt zelf met vertrek als hij naar eigen zeggen niet correct wordt behandeld. Obole OVAP moet ze niet krijgen, want ze van Bromchi Jarin is nakere Santokhi raad te karat raan. Bole ab nakere he, bole onder voorzitter Aziz Kumar Gayadin, volgens hem de enige die telefonisch contact met hem opnam en hem uitnodigde voor een persoonlijk gesprek. Dat gesprek vond plaats in de fractiekamer van VAP. Obole volgens VAP toont dit aan Gaya die nog gevoel heeft voor de partij. Obole de artiest zegt dat hij zijn kritiek vooral uitspreekt in het belang van VHP achterban. Obole Boekroe zegt kansen te zien voor VHP. Volgens hem zou de partij NDP verslaan als er vandaag verkiezingen zou worden gehouden. Hij vindt daarom jammer dat VHP-leiding onvoldoende inzet dat er hard gewerkt moet worden. Te ibad kadensi bole he VHP'er bole ja oke aandacht na miliga te bole ki u bole ki partijya chhod ke aur chal jayega hamari janta aise baat hai. अब देखो भैया हम लोग जाने ला शहर में हम लोग के रैक सेटिंग हुए लेकिन देखो रैक सेटिंग अल्बिना भी हुई भाई अल्बिना भी हुई बताया गया है कि एगो रेख मांग बले देशांतरालिसांसी फन रेख प्राण सेंड सेटिंग है ना मुंगो एम्ब्रोकोपुंडो ने ऐड खबर है ना अल्बिना पहले मुंगो ब्रोकोपुंडो मोटा अल्बिना भी होएगा ओक द अफ़डेलिंग लीगलिसांसी खार फोर्टन रेख स्ट्रीस दिस फरलेनिंग अनबिदन अल्बिना rechtspraak dichter bij de burger. Tijdens de openingsceremonie sprak Auro D.C. Bolis Marwijneke Marvin die dank uit aan het hof die hem lukke partners uitbreidt hem lukke relatie hem lukke Albina hebben hier per rechtspraak hoepaiga legalisatie voortaan in Albina. Tijdens de ceremonie waren medewerkers van de afdeling legalisatie aanwezig mevrouw Kortram en mevrouw Rees overhanden documenten aan burgers onder toezicht van de gevier. Toen het je baat is dat Albina me bij rechtszaak hoi. Nee, sabke aweke pare hai. Aur sahre me, bhaiya ekar baare me, aise baat cheech hove hai.
तो हम और आगे जाए भैया क्यूबा के ओर त्रिम के ओर क्यूबा तेईस प्रेक करे क्यूबा स्प्रेक त्रिम तेईस मेन से बोले अमेरिका के तेईस प्रेक करे से तेईस अंदर हंडलिंग क्यूबा के बात हुए है तो यहाँ बतावे अमेरिका क्यूबा में बोले अंदर हाउडन कॉन्टैक्ट है गा बोले फॉर्मेला अंदर हंडलिंग इस फॉल्कस हफाना जोन क्यूबा में बोले खेंस प्राक और एक बारे में क्यूबा के डिप्लोमेट जोन है जोन अमेरिका में वाशिंगटन में बोले है कम्युनिकेशन कनाल इंटरसर बेडल लंदन बस्तान बोले द कॉन्टैक्ट इन फलोपन फिर पर्सनल का ऑनमुटिंग टेलीफोनिक गस्प्रेक है व्हाट्सएप से गस्प्रेक है गा अंदर हलनिस अजेंडा ऑफ द हेरफाटिंग फॉर द ऑफिशियल गस्प्रेकिंग के बारे में हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता है तो एक गीत आप लोग के और सुनाकर अभी हम तुरंत आ जाएंगे अपना प्रोग्राम को लेकर हमारी जनता एवरी ग्रीन बॉलीवुड सॉन्ग आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे हमारे प्यारे प्यारे सुने सुने सुने और वालों के बातचीत है

ये गीत आप लोग को हम सुनाते हैं। दोस्तों एक दो समाचार हम आप लोग को और सुनाएंगे, उसके बाद में हमारा प्रोग्राम को हम बस खत्म करेंगे यारो।

बेदी में खाली जा है सुंदर इन खफर प्लेटिंग और बोले ऑफिशियल रिलेट सीना है ऐ दले बोले बैठ फराओ हां इसे बोल ली तो भोग दे से छोड़ी भैया को वेने के मानचित है साथे साथ बुरों तो बोले एक वेल नीत दाते का फर किसिंग इशू और साथे

और नीनिना मुझको आए दादा हेमंत कुमार और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। तो कहते हैं महकती हुई जिस्म तेरी गुलाब जैसा है, महकती हुई जिस्म तेरी गुलाब जैसा, तेरी गुलाब जैसा है। महकती हुई जिस्म तेरी गुलाब जैसा है, नींद के सफर में तू एक ख्वाब जैसा है। दो घूंट पे लेने दे आंखों प्याले है, दो घूंट पी लेने आंखों प्यासी है, नशा तेरी आंखों में शराब जैसी है। तो दोस्तों हेमंत कुमार के बाद हम जाते हैं महेंद्र कपूर की ओर। फिल्म के नाम है हमराज, पुराना हमराज है दोस्तों, ये नया हमराज नहीं है, पुराना हमराज है। आओ सुना जाए।

0: और तुम अगर साथ देने को वादा करो तो क्या होगा। और ये फिल्म का नाम है हमराज महेंद्र कपूर का ये जोन है। तो हम भी जाते हैं दादा हेमंत कुमार की ओर। फिल्म के नाम है 20 साल बाद।
1: जरा नजरों से कह दो जी

और ये है दादा हेमंत कुमार का फिल्म के नाम है 20 साल बाद यारो। ये जालिम जुदाई ना होती, काश ये जालिम जुदाई ना होती, ऐ खुदा तूने ये चीज बनाई ना होती। हम ना हम उनसे मिलते ना प्यार होता, अपनी जिंदगी फिर पराई नहीं होता। तो दोस्तों अब हम चलते हैं और ये है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग। और किसी पत्थर की मूरत से और क्या क्या है आओ सुना जाए। फिल्म के नाम है तुम अगर साथ देने का वादा के बाद।

और किसी पत्थर की मूरत से प्यार करने का इरादा है। और महेंद्र कपूर ने आप लोग को सुनाई है दोस्तों, और हम और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर चलते हैं कि आज हम आपको कुछ महेंद्र कपूर का गाना और कुछ दादा हेमंत कुमार का गीत आपको सुनाएगा। तो दिल के बाद जो कहते हैं तो कहते हैं, मानता ही नहीं कमबख्त दिल उसी चाहने से, मानता ही नहीं कमबख्त दिल उसे चाहने के, मैं हाथ जोड़ता हूँ तो ये गले पड़ जाते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ तो ये गले पर जाते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं दादा हेमंत कुमार का ये सॉन्ग है, फिल्म के नाम है बिन बादल बरसात की ओर हम जाते हैं। और ये है दादा हेमंत कुमार, नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है, जिस फिल्म में आशा परीख ने काम किया है।

और एक बार जरा फिर कहिरो मुझे शर्मा की तुम दीवाना। दादा हेमंत कुमार नैतिक लता जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है बीन बादल बरसात। तो हम कहते हैं दोस्तों, इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब है, दास्तां भी बड़ी अजीब है, बड़ी मुश्किल से इसकी खुशी खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर किस खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं और दादा हेमंत कुमार के बात में और महेंद्र कपूर की ओर, जिस फिल्म में सुनील दत्त काम किया है और माल्हा जीना ने काम किया है, मूवी के नाम है गुमराह।

और इन हवाओं में यानी कि इन घटाओं में, और आज हम आप लोग को हमारे यारो आज आप लोग को हम महेंद्र कुमार और दादा हेमंत कुमार का गीत कुछ सुनाएंगे। ये मूवी का नाम था गुमराह, और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। कहते हैं दोस्तों, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है। मेरी आगे मोहब्बत है और तेरे आगे क्या है, तेरे आगे जमाना है। तो इसके बाद हम चलते हैं और वो है मूवी का नाम है कोहरा। नाइटिंगेल लता जी और दादा हेमंत कुमार का ये जो है

और बेकरारी दिल, और बेकरारी दिल के बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाएंगे हमारे दोस्तों। और हम चलते हैं कि कहते हैं कि देखकर तुमको अस्कर, देखकर तुमको अक्सर हमें ऐ एहसान होता है, कभी कभी गम देने वाला भी कितना खास होता है। हमारे यारो तो उसके बाद हम चलते हैं और वो है महेंद्र कपूर नाइटिंगेल लता जी के जोंग की ओर।

और इंतजार करना तो चाहिए आए दिन बहार की, और यानी कि इस ओल्ड इज गोल्ड का सॉन्ग है दोस्तों। और जो गीत अब की बार है वो है एक रोमांटिक सॉन्ग है, और जिसमें महेंद्र कपूर ने गाया है आशा जी के साथ में।

हम जब भी सिमत के आम की फिल्म के नाम है वक्त नहीं खती होंद एन वेवसेस का ये गाया हुआ जोंग है और ये गीत जो है वो है आशा जी और महेंद्र कपूर का गाया हुआ सॉन्ग है। फिल्म के नाम है वक्त।

और दिन है बहार की, तेरे मेरे इकरार की। फिल्म के नाम है, फिल्म के नाम है वक्त दोस्तों। और वक्त की बात तो हम, और ये गीत है हेमंत कुमार का, ये सॉन्ग है जिसमें शमी कपूर ने काम किया है, मूवी के नाम है ब्लफ मास्टर।

कलां कलां चश्मा लगैली ये कुछ नेपाली सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो और उसके बाद हम आप लोग को और कुछ सुनाएंगे।

ये काला काला मेरे ख्याल से आंखे पे और चश्मा लगैली, ये नेपाली जोंग है दोस्तों। कुछ समझ में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं, लेकिन जो उसका जोंग है, ढंग है, हमारा बॉलीवुड सॉन्ग के स्टाइल है। तो आज आप लोग को हम सुनाएंगे, हम और चलते हैं, एक रीमेक्स हो जाए नेपाली का जोंग।

सो कुछ रिमिक्स सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते ही रहेंगे और उसके बाद हम चलते हैं एक गीत की ओर और वो है सुशांत काशी सारंगी के वांछित हो रहा है और क्या है आओ सुना जाए ये कौन सा सॉन्ग है लेकिन पूरा नेपाली सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे।

और हमारी प्यारे प्यारे सुनने वालों, उसके बाद हम अगला गीत की ओर जाते हैं। लेकिन आज हम आप लोग को नेपाली सॉन्ग हिट ऑफ मशहूर फन त्यार तक नेपाली सॉन्ग्स और मूवी सॉन्ग्स भी आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये सब गीतों गीत जो है और बहुत अच्छे से गाया हुआ है, आओ हम सब मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों आपको हमारा यही आशा है कि आपको आपको ये नेपाली सॉन्ग भी आपको अच्छा लगेगी। आप जानते हैं बे रेडियो फाहुन हैप टू आलस इन हेस, कभी तो नेपाली होता है तो कभी भोजपुरी सॉन्ग होता है, तो कभी भोजपुरी सॉन्ग मॉरिशस के होता है, तो कभी बैठक गाना होता है, तो कभी बॉलीवुड ऑल इज गोल्ड सॉन्ग, और कभी रीमिक्स, तो कभी नया सॉन्ग। दिस वी हैव आलस इन हेस में से एंड दैट इज द क्वालिटी फन ऑन सी रेडियो फोन। आओ एक और चला जाए नगर नंजी नालाल, नगर नंजी नालाल।

और नागर नंजी नालाल अदिच्या गदवी का ये जोंग है। हमारे दोस्तों नोगमाउस वेजेंग फॉन अलस इन हुईस एंड दैट इज अलीन बे रेडियो फाहुन के पास हर एक रकम के गीत आप लोग सुन सकते हैं जैसे ये भी।

और माया तमाया हो दोस्तों, और माया तमाया के बाद तो हम चलते हैं कुछ डांस गीत की ओर, जो न्यू नेपाली लोक दोहरी सॉन्ग, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है ट्वेई दर्जन फेवन से इवन तक। इसका मतलब तो हमारा समझ में नहीं आते, लेकिन यहाँ लिखल है न्यू नेपाली लोक दोहरी सॉन्ग ट्वेई दर्जन फेवन से इवन तक। सलको पटको सर को पटको दोस्तों, आओ सुना जाए इसका मतलब क्या है।

और दोस्तों कुछ नेपाली सॉन्ग यहाँ से हम चलाते हैं और सुना जाए लाई भरी लाई।

और लाल परी हो लाल परी। उसके बाद हम और कहां जाते हैं, एक सॉन्ग और हो जाए।

0: और यहाँ क्या कर रहे हैं?
1: तुमने तो मुझे बुलाया था।
0: मैंने? आपकी तबीयत तो ठीक है, मैंने कब बुलाया आपको?
1: यही कुछ 9 या 10 साल पहले। बड़ी जल्दी भूल गई आप।
0: 9-10 साल पहले
1: तब मैंने कहा था कि अगर सब प्रोग्राम करेंगे तो देखेगा कौन। माफ करना सूफी, मुझे आने में जरा देर हो गई।

अभी आप सुन रहे थे मिशन कश्मीर है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुन रहे थे बुमब्रो। इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करने वाले हैं, रिंद पोशमाओ।

0: साहब, कम इन खान साहब, खान साहब,
1: कम इन खान साहब।
2: अल्ताफ,
1: कैसी लगी मेरी पेंटिंग?
2: अल्ताफ कहाँ तुम?
0: आप में और मुझ में एक छोटा सा फर्क है खान साहब, मैं बच्चों की जान नहीं लेता।
2: अल्ताफ कहाँ तुम?
0: शंकराचार्य की तरफ देखिए खान साहब,
1: आपके जन्मदिन की फुलझड़ियां छूटने वाली है।
3: अभी आप सुन रहे थे रिंद पोशमाओ फ्रॉम द मूवी मिशन, कश्मीर से हमने पेश किया है सुनने वालों। धड़कन है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से आप सुनेंगे नाना करते प्यार।

नाना करते प्यार तुम्ही से कर गई। फ्रॉम द मूवी धड़कन से हमने पेश किया है सुनने वालों। जाने दिल में कब से है तू, लता जी के साथ में सोनू निगम जी आपको सुनाने वाला है फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे।

जाने दिल में कब से है तू, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कोई कहे कहता रहे।

कोई कहे कहता रहे फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है, इसी फिल्म से हमने ये गीत चलाए हैं। सुनने वालों, जब क्या चीज संदेह है तो क्या करनी चाहिए, चिल जस्ट चिल।

Just chill. और पता है कि जस्ट चिल का मतलब क्या है? क्योंकि आज संडे है तो आपको चिल करना है ना। पॉपकॉर्न खाओ, मस्त हो जाओ। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सर से सर का जाए दुपट्टा बेईमान रे।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पॉपकॉर्न खा मस्त हो जाओ, इसी फिल्म से हमने पेश किए है सुनिधि चौहान, विशाल और शेखर की आवाज में आपने सुने हैं दुपट्टा। और दुपट्टा के बाद आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार क्यों किया, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दिल दी नजर।

सोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए, क्या बात है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग। सर तो तैयारियां कर दिया है, उतार के बिग दिया है दोस्तों। डांस कर रहा, लेट्स डांस।

ग्रेट मेमोरीज, ग्रेट मेमोरीज, ताम ताम भोजपुरी सॉन्ग चलेगा। आप एक हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो है प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। साहब यूसुफ भी बैठा हुआ है।

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान, रवि सिंह एंड नादिया सिंह, दोनों की आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

अबकीबार ग्रैमी अवार्ड विनिंग सॉन्ग फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा निहिर सीवन सेस के बात है जब ये सिनांदिस आया और उसी समय पर एक बार बना था जिससे एक पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पता पता।

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपके मन में उपस्थित हुआ हूँ सुंदर से कार्यक्रम लेकर। यहाँ से 8 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। आज जबकि बुधवार अक्टूबर के 7 तारीख के शाम के कार्यक्रम है। कुछ मिलने जुले गीत, कुछ नगमे, कुछ प्यार भरी बातें आपके साथ जो हैगा तो करेंगे और यही आशा लगाए हैं कि जरूर आप भी हमारे साथ देंगे। अगर आप अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं या कोई गीत की मांग करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के नंबर है 06 24 64 64। शाम के वक्त है और काफ़ी लोग जो घर पर बैठे हैं भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर कुछ वेस्ट इंडीज संगीत हम आपके लिए पेश करते हैं, कुछ बैठक गाना पेश करते हैं। आशा लगाए हुए कि ज़रूर आप सभी को भी पसंद आएंगे। तो पेश हैं तुझे सूरज कहूँ या चंदा, और ये सुंदर संगीत आपके नाम पेश करते हैं हम, और ये भी बेहद सुंदर नगमा राम नारायण की आवाज में आपके लिए पेश किया जाएगा। तो भेजे
1: always have to wait for a special occasion to celebrate with our loved ones, because every day we're alive is a special occasion.

तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, रेमुंड राम नारायण और साथ में राकेश जानकर दोनों मिलकर और फरमाई है ये सुंदर से गीत। और गीत जो अब की बार आप सुनने वालों का नाम सुने हैं तो वो है सुरनाम के मशहूर गायक श्री रामदेव चैतू फरमाने के लिए जा रहे हैं अब की बार। और ये भटकते हुए गीत आप सुनने वालों का नाम पेश कर रहे हैं मैया मोरी बरस बरस।

हम देव चैतु के मधुर आवाज में सुने आपके मैया मोरी बर्ष बर्ष रसवाई। और इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं और गीत जो आपके नाम है तो एक और ऐसा ही सुंदर से भड़कते हुए नगमा पेश।

तो उसको आपको याद दिलाते हैं कि यह कार्यक्रम बिल्कुल लाइव आपके मन में प्रस्तुत किया जा रहा है, और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं 9 तक 4 तक सेफ नफेट 4 तक पर आप संपर्क करें।

लंगर मोरी गागर फोरी गई हो रही और ये त्रिनिदाद के मशहूर गायक के साथ जानकरन की आवाज में आंचे कार्यक्रम में आप सुने हैं दोस्तों। तो जैसे हमने बताया तो ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हैगा और आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। जानकारी के लिए या तो अपना विचार देने के लिए संपर्क के लिए आप हमसे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं 9 7 2 4 6 7 4 6 पर और जरूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों लेकर चलते हैं और जब गीतों के बाद आगे बढ़ाते हैं तो हमारे ही सत्यानंद रेखा जी अब की बार फरमाने के लिए जा रहे हैं और ये सुंदर शनगमा के बोल हैं तेरी मुरली की मधुर तान।

कन्हैया जी को फिर से बजाए जाओ रे, और क्या बजाएंगे कि मुरली के और मुरली के ये मधुरी तान कहे कि फिर से बजाए जाओ रे, और हमने आपके लिए इसे बजाकर और रख दिए हैं। तो लेकर चलते हैं, अब की बार चंद्रवती चैतू फरमाने के लिए जा रहे हैं।

प्यार से उसे सजाया हमने और जो सपनों ने संसार बसाया उसमें हमने एक महल बसाया और महल बसाकर दोस्तों उसे प्यार से भी सजा देते हैं। ये सपनों वाला जो संसार है हम सभी बनाते रहते हैं और पेश करते रहते हैं। तो अब की बात लेकर चलते हैं एक बार फिर से सत्यानंद रेखा। पल पल बीती जा तुमरिया प्यारा प्यारा बचपन का।

पल पल बीतते जहाँ तुम्हारियाँ, प्यारा प्यारा बचपन का। और दोस्तों, अगर ऐसे गीत हम सुनते हैं तो हमारे भी बचपन याद आ जाते हैं, और वो बचपन धीरे धीरे कैसे बीत कर और जवानी पा जाए, और वो सुंदर से प्यारा प्यारा बचपन हम पीछे छोड़ाए हैं। हरिदत्त जयराम फरमाने के लिए जा रहे आपकी बार। चोर लोचक के माला जपते साधु तोरे ताला, देखो रे लाला दुनिया का खेल निराला।

एक बार इलाहाबाद दुनिया का खेल निराला और हरिदत्त जयराम की आवाज में ये गीत आज के कार्यक्रम में आप सुने हैं और इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं कृष राम खिलावन।

0: नशे तुरी नई मशीनियां छापे नकली नकली नोट और ये भी आम सुनी क्रिस राम खिलावन की आवाज में ही। और इसके बाद हम आपको लेकर चलते धोबिया मर जाइए रे राजू शिव गुलाम
1: मर जाइए धोबिया।

0: जरा भी पुराण धवाए डालो क्योंकि धबिया मर जाइए। तो जल्दी जल्दी से आप अपना सभी चादर धलवाए डालो, क्या है कि मर्द से पहले धोए डाले।
1: तो मैं क्या करूं?
0: हंस अगेन राजू से गुलाम।
1: शायर हूं, कोई शायरा बैठ जाए तो मैं क्या करूं? फर्ज अपनी निभाते रहे नूर का और अस्फीन रूठ जाए तो मैं क्या करूं? बात सुनाई छप्पन छोरी को कौन समझाएगा? बात सुनाई छप्पन छोरी को कौन समझाएगा?

घोर मेहरारू घर घर में आग लगाएगा, तो जरूर इससे आप बच के रहें दोस्तों। और आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं तो रकलाम के बारी हो रहा है और कार्यक्रम में जो बैठक गाना हमने पेश किए हैं तो ये आखिरी गीत के साथ साथ समाप्त होने पा रहा है। रकलाम के बाद कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स लेकर उपस्थित होने वाला हूँ, आप हमारे साथ ही रहें। अपना विचार देने के लिए या जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं 0623 24 64 Once again 0623 24 64 Zeven Fetak 64.

आतिफ असलम के पास भाई यही सुंदर सी गीत आज के कार्यक्रम में दोस्तों आप सुने हैं और यही आशा उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आए होंगे। बेहद ही सुंदर नगमा की बारी है और हम लेकर चलते हैं आपको ये गीत यही आशा के साथ कि जरूर आप सभी को भी पसंद आएंगे।

दोस्तों याद रखें, हर एक काम के लिए, हर एक जानकारी के लिए नल सेफ अंतक 326 तक सेफ न सेफ अंतक ये हमारे दफ्तर के नंबर है। और यदि आप हमारे कार्यक्रम से संपर्क करना चाहते हैं, ये सुंदर से कार्यक्रम के बारे में कुछ टिप्पणी लिखना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप है 026 तक 4 तक सेफ न फेटक 4 तक।

रेडियो फाउन के माध्यम से कुछ पुराने कुछ नई बातें होती रहती हैं। गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते दोस्तों, और गीत जो अब की बार हम पेश करने के लिए जा रहे हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने बतलाई है, गीत पेश करते हैं आप सुनने वालों के नाम, अपने तो अपने होते हैं।

सोनू निगम जय गांधी एंड जसपिंदर नरुरा की आवाज में सुने आपकी अपनी तो ही अपनी होते हैं और ये सुंदर से नगमा आज के कार्यक्रम में रेडियो फाहुन के माध्यम से हमने पेश किए हैं। अदनान सामी फरमाने के लिए जा रहे हैं कभी नहीं, तो ये गीत हमारा आप मिलकर सुनते हैं।

दिस सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने और साथ में नाम सामी मिलकर फरमाए हैं कभी नहीं। और ऐसे कुछ नगमे कार्यक्रम में चुने हैं दोस्तों, कुछ प्यार भरे कुछ दर्द भरे बयान कार्यक्रम में पेश कर रहे हैं

0: बन के तेरा जोगी और कार्यक्रम में ये गीत हमने पेश किए हैं। दोस्तों एक बार फिर से याद दिलाते हैं, हर एक जानकारी के लिए, हर एक काम के लिए नुल सेवन तक द्री त्वें सस्तक त्वें तक जीवन जीवन तक। और यदि आप हमारे कार्यक्रम के लिए यानी ये सुंदर से कार्यक्रम के लिए आप इसमें कुछ संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे प्रसोड़क संपर्क करना चाहते हैं, तो नुल सस त्वें त्वें तक फिर सस्तक जीवन फिर तक फिर सस्तक नखमाल्स नुल सस त्वें त्वें तक फिर सस्तक जीवन फिर तक फिर सस्तक पर सिर्फ व्हाट्सएप बरिख्त आप भेज सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जब गीतों की सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम में जो बिल्कुल लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और यही आशा लगाए हुए कि आप सभी को भी पसंद आ रही होगी, कुछ ऐसे नंग में कुछ प्यार भरी बातें, कुछ प्यार भरे नंग में आप सुनने वालों के नाम चुने हैं और कुछ गीत भी आपके लिए जो है हम लेकर आए हैं, आशा लगाए हुए कि आप सभी भी हमारे गीत से पसंद उठाएंगे और गीत सुजो सराहेंगे। तो पेश करते हैं और जो गीत हम लेकर आए हैं परदेसिया, परम सुंदरी फिल्म के नाम है सिद्धार्थ के और जानवी इसमें काम किए हैं और हम आपके नाम पेश करते हैं।
1: स्माइल देने से मैं मान जाऊंगी ना।

फिल्म के नाम परम सुंदरी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी, ये इसमें काम किए हैं। सोनू निगम के आवाज में हमने आप सुंदर से नगमा आप सुनने वालों के नाम रख दिए। आशा लगाई है कि आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों लेकर चलते हैं और गीत जो अब की बार हम आपके नाम पेश करने के लिए जा रहे हैं, तो ये भी राहत फतेह अली खान की आवाज है और आपके नाम पेश करते हैं। जिया थड़क थड़क जाए, फिल्म कलजुग से निकालते हैं अन्नू मलिक के साज है, असीन राजा के लिखा हुआ गीत।

तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, दिया धड़क झड़क जाए। और ये आपके नाम रखे हैं दोस्तों। कहते हैं कि छूले आसमान जमी की तलाश न कर, छूले आसमान जमी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी से और खुशी को तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। पेश करते हैं।

इश्क मंजूर फरमाए हैं कार्यक्रम में दोस्तों, और कि इश्क मंजूर है या नहीं तो ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0623 और दफ्तर का नंबर है 0733 20 70 20। तो आप अपना विचार दे सकते हैं संपर्क के लिए 0623 20 70 20। आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, और ये भी रेक्स ट्रिक्स।

सोनू निगम ने सुंदर सनग मा फरमाई हैं और ये भड़कते हुए गीत आपके नाम हमने रखे हैं, आशा लगाए हुए कि आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, है जो पास उसे संभाल कर रखना मेरे दोस्त, खोकर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता। रेडियो फाउंड के माध्यम से कार्यक्रम आपके मन में पेश किया जाता है और गीत लेकर चलते हैं प्रीत रे, फिल्म का नाम

शनन जुनिता के आवाज में आप सुन रहे हैं कि प्रीत तेरी फिल्म धड़क द्वितीय से निकाले हैं और पेश किए हैं। उदित नारायण जी फरमाने के लिए जा रहे हैं, मेरी सांसों में बसी है तुम।

0: दूर रहकर भी तेरी दोस्ती निभाऊंगा। धाट्रो मिलियंस माइटी मुकेश की आवाज में आज ये कार्यक्रम में आज गीत सुनी और दोस्तों की बार लेकर चलते हैं सचिन देव बर्मन फरमाने के लिए जा रहे हैं आज के कार्यक्रम में।
1: कौन है तेरा
0: वह कौन है तेरा मुसाफिर।

वह कौन है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। सचिन देव बर्मन की आवाज में ये सुंदर नगमा कार्यक्रम में पेश किए हैं। ये रात्रि कार्यक्रम है दोस्तों, कश्ती का सुहाना सफर। ये कश्ती का सुहाना सफर है जो पिछले दिनों में हम चला रहे थे, और वही कश्ती वही नौका आज हम एक बार फिर से दिनहाक से निकाल रहे हैं। यदि आप इस कश्ती में हमारे साथ बैठकर और प्यार की दुनिया या तो दर्द की दुनिया की सफर तय करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हो जाइए। व्हाट्सएप के माध्यम से आप संदेश भेजिए 9724 पर, हमारे हम सफर बन जाइए और मिलकर ये सफर तय हम करेंगे। दादा हेमंत कुमार अब की बार फरमाने के लिए जा रहे हैं।

कृष्ण का खामोश शहर है, रात भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बस्ती है, लहरों की शहनाई भी। दोस्तों, ये कार्यक्रम में आप भी साथ हो जाइए और मिलकर हम ये कष्टी का सफर आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्यार भरे, कुछ दर्द भरे बातें करेंगे, ऐसे कुछ नगमे आप सुनने वालों के नाम चुने हैं। मुझे एक खबर अंदर आई है, एक व्हाट्सएप पर अंदर आई है। तन्हा शहर के रहने वाली श्रीमान महेंद्र ने अब संदेश भेजे हैं, संपर्क किए हैं और कहते हैं कि कार्यक्रम उनको बहुत पसंद आ रहे हैं, एक और मुकेश के गीत मांग किए हैं। तो भाई महेंद्र, आपके नाम पेश करते हैं ये सुंदर से मुकेश के गीत।

सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ट्रोपिनियंस माइटी मुकेश और साथियों मिलकर ये सुंदर सनगमा फरमाए हैं। आज रात्रि के ये सुंदर सी कष्टी का सुहाना सफर नामक कार्यक्रम में गमों में हंसने वालों को भुलाया नहीं जाता, गमों को में हंसने वालों को भुलाया नहीं जाता, पानी को लहरों से हटाया नहीं जाता। बनने वाले बन जाते हैं मेरे दोस्त, अपने कहकर किसी को अपनाया नहीं जाता।

मशहूर गायक महदी हसन की आवाज में सुनी आज तक याद है वो, और बाकी बयान आप सुन रहे थे दोस्तों। कहते हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, कुछ हसीन ख्वाब आंखों में आकर एक नया दर्द दे जाते हैं। मन के कोरे कागज पर वो आसमानों की तस्वीर सजाते हैं, मन खुशियों से भर के आंखों में आंसू दे जाते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं।

दिल के सोने आंगन में आशाओं के फूल खिलाते हैं, बंद पड़े साजों को गीत नया दे जाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, दिल के अंधेरी दुनिया में एक चिराग नया जलाते हैं, दिल की नई दुनिया में एक चिराग जलाते हैं, प्यार की बारिश करके वो इंद्रधनुष का रंग दे जाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं।

हमारे धनौक शहर के रहने वाले हैं श्रीमान सुरेश जी, वो भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किए हैं और हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। हाय सुरेश, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके व्हाट्सएप पर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

हमराही मेरे हमराही लता मंगेशकर और साथियों मिलकर फरमाए हैं कार्यक्रम में दोस्तों, और फाहून की आवाज़ ही आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। और आपको याद दिलाते हैं, यदि आप हमारे कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं या तो आप कोई काम करवाना चाहते तो 0 7 3 2 6 2 7 7 हमारा दफ्तर का नंबर है। और यदि आप मुझसे और सीधे डायरेक्ट संपर्क में आना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कीजिए 0 7 3 2 6 2 7 4 6 0 7 3 2 6 4 6 0 7 3 2 6 4 6 पर संपर्क करें और आपके व्हाट्सअप हमारे सराखों पर

ज्यादा हेमंत कुमार के मधुर आवाज में आप सुने आए दिल अब कहीं ना जा। लता जी आपकी बार फरमाने के लिए जा रहे हैं, जब रात्रि कार्यक्रम है दोस्तों, तो आपके नाम पेश करते हैं।

नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। हरिओम, एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप साथियों। पावन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सभरावा प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो पावन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णा दत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गुना आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम संगीतकार का दास्ता नाम कार्यक्रम खलिंत में गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यारो ये यशो उम्मीद लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तू जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है। मैं ढील फील लजर प्लेजर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्तर या इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फरमान फ्राइडा टेनिस कंतोर यूरोप फोकन टेलीफोन नंबर कंतोर 07-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं। यार वैनी तो फिर खेत है, उनसे क्वालिटी इज ऑलवेज योर गारंटी एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फूड इज ऑलवेज लेकरदर बाय फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे, जो खास करके भैया अमित जी ने आप सभी के खिदमत में पेश किया। जिस तौर तरीके से अमित भाई जी आप सभी को सदियों से सेवा करते आ रहे हैं, ये यश अमित है कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम जो काफी जबरदस्त था आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद अमित भाई जी हमारे फुल टीम की तरफ से, और आपको भी फुल टीम की तरफ से शुभ रात्रि। हो सकता है कि आपके घर पे एक जश्न मनाया जा रहा है, खुशी का दिन मनाया जा रहा है। हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे खुशियाँ की खुशियाँ बधाइयाँ ही बधाइयाँ प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। ऊपर वाले से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शैन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। अनित फरखेत है बंधु, जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना, फाहुन हिंदुस्तानी को भी सुनते रहना और थोड़ा बहुत तो हम लोगों के बारे में जरूर बातें शातें करते रहना। फनहर्त पीटर साहब कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से सुस्वागतम। और हो सकता है कि आप कल परसों या आज कामयाब नहीं हुए हो, तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु, मूर्ख इस वेर अंदख है नोइत अफीफ है वो तो लेरते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी। सो चलो बिलो बी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अ ट्यूर लब डंट फॉर हेड लेस्टर। इसमें प्रवेश हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से सुस्वागतम फैन फकांसी। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं या तो फकांसी पे हो, तो आपको भी एक हेल फैन फकांसी शुभ यात्रा।
तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को ओपन फकांसी अदरेट्स इंटरनेट के लहर द्वारा आया ओपन टैबलेट स्मार्टफोन ऑफ लैपटॉप. तो आप भी सुनिए हम लोगों को सो बेंट यू एंड ब्लाइव टी फन ऑल सब जो होते हैं फन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली हमारे डेन हार्ट शेयर का द वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुडू. तो साथियों प्रोग्राम की शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ फ्रॉम द मूवी ललकार ने कंपोज्ड बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी. क्या छा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है. इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते रहते और जरा कहते ही रहेंगे कि हैव टू नास्ट ऑल दैट लीफ है उसेन मेंस हस्टीड और खुद ओप द आर्द ओम एलकार लीफ टैब कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है साथियों खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है. तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम पहला अध्याय में दूसरा अध्याय में सिर्फ नगमे 9 बजे से 10:30 बजे रात्रि तक सिर्फ नगमे आप सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं बीच में कुछ ज्ञान के बाटे हैं शेर शायरी भी है. तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 बजे रात्रि तक चलेगा यार. तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना रफी साहब जी.

क्या जबरदस्त कंपोजिंग है ये महान संगीतकार मास्टरो जयदेव जी का। और लता जी हमेशा अपने इंटरव्यू में कितने बार कहा है ये महान संगीतकार जयदेव जी के पास जब मैं कुछ गाने रिकॉर्ड या रिहर्सल करने को जाती थी तो मैं अपने आप को कुछ और ज़्यादा तैयार करके जाती थी, क्योंकि इनका जो ऐसा था ना ये महान जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर का वारे हिल हो ऐसे और रफ़ी साहब जी के लिए कुछ अति सुंदर सुंदर बेहतरीन से नगमे, मुकेश जी के लिए, किशोर दा के लिए कुछ नगमे और ख़ास करके तलत जी के लिए भी कुछ नगमे वो बनाया था जो काफ़ी हिट हुए। यानी तो फिर खेत यौंग नरासी मास्टरो हरिहरन जी हेफ हे लॉन्ग मेथ हेम ओक सामन गवेरक्ट। Daarom zijn de gezels van maestro Hariharan ook heel, heel mooi om naar te luisteren. Agla bayan zara dil ko tham lijiye, laakh karon ka dil churane wala, damaiti Mukesh ji ko laate hai the heartthrob of millions. It's an unreleased song. Aur dekha jaye film Lori jo kabhi nahi release kiya gaya tha, महान संगीतकार नेत्रहीन द ब्लाइंड म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर प्रोड्यूसर कंपोजर मास्टरो रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ ये जबरदस्त सॉन्ग जो किसी फिल्म में नहीं फोराया। पल भर जो बहला दे कोई ऐसी खुशियां दे, क्या बात है। मुकेश जी के आवाज़ में स्पेशल फॉर द मुका फैंस।

सत्यमेव जयते। दिल को छू लेने वाला नगमा श्रोताओं के सामने पेश किया गया नॉन फिल्म सॉन्ग आयोजनीतः कॉम्पोनेट और मैस्ट्रो जयदेव वर्मा, खरीफ और उद्धव कुमार, और गाने वाली थी भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी। 3 मिनट गुजर चुका है साथियों, 8:30 एक बार फिर लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी का ये ऑल्सो अनरिलीज्ड नॉन फिल्म सॉन्ग आप सुनिए। किसकी है रचना ये, स्पेशल फॉर द मुका फैंस।

Laku keruka dulu curani wala the heart of millions the mighty mukes jika e beautiful song up soon rehete khas karke special for the muka fans fahunra Hindustani radio pe aap chun hai sathiyo aur waqt ho gaya hai na kuch gyan ke baatein ho jaye hamare gyaniyon ke liye पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने जिंदगी के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं सिद्धांत के रूप में जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। यह शो उम्मीद लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ न कुछ तो हम लोग हमेशा की तरह सीखते ही रहेंगे। तो जरा गौर फरमाए अर्ज क्या है मफ्रा इन रंत और वो कही है साथियों की द फ्राग इज नीट ऑफ वे स्लाफ सैन फॉर एन गुड डूल ऑफ फॉर एन स्लेक्ट डूल द फ्राग इज नीट डिक्टाटूर डोर एन गुड बेंडे ऑफ डोर एन स्लेक्ट बेंडे द फ्राग इज फ्रेहेट ऑफ डिक्टाटूर एंड एक गा फॉर द फ्रेहेट नैचुरली। हरमन ब्रोट जी ने कहा है वे अक्सेप्टेरन यू सोअस एक बेन। हर एक मूलिश ने कहा है साथियों की पॉलिटिक इज फ्लुइबार खस्कीदनेस खस्कीदनेस इज खस्तोल्ड पॉलिटिक। Johan Cruyff ne kaha hai saathiyo footballen is heel simple maar het moeilijkste wat er is is simple footballen. Nog eentje van Herman Brood, ze kunnen beter over je fiets lullen dan over je lul fietsen. Humor. Van Zuid-Afrika Nelson Mandela en Kahai Satyoki armoede is door de mens veroorzaakt en kan alleen door de mens worden overwonnen en uitgewist. Nog eentje van maestro Johan Cruijff. Ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken. Meer citaten van Johan Cruijff, nog eentje van hem. Je moet de bal hebben om te schieten en schieten om te scoren, maar dat is toch logisch. Deze is een hele goeie van mevrouw Corrie ten Boom. Angst verandert niets aan het verdriet van gisteren en lost de problemen van morgen ook niet op. Van vanavond Kaisri Charles Bernard Shaw. Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten. Vertel mij dat. Er staat hier op kuch gyan ke baate sun rahe the jo kuch gyanio ne likha. और यही अशो उम्मीद लेकर मैं इन बातों को आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। 17 मिनट रह गया है 9 बजने में। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड खलिंग मित संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अगला बयान सुरों का बादशाह किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी को लाते प्रोग्राम में। एक फिल्म आखिरी दांव गकंपोनेट डोर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एंड गेस्क्रीव डोर हसरत जयपुरी ऐसा ना होके दर्द से भरा हुआ बयान। एंजॉय द म्यूजिक।

From the movie Acri Down 1975, lepší mi kan piari lalki saj per revisabji ke madura wasmi or alfazita hasrat jaipurijika. गरम नीट रह गया है साथियों और नौ बजने में आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड खलिंग में संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम अगला बयान एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी फ्रॉम द मूवी साहेब बहादुर 1980 महान संगीतकार मैस्ट्रो M&M द ग्रेट मदन मोहन जी के साहज पर राजेंद्र कृष्ण के अल्फाजे दर्द सा भरा हुआ गाना सुनिए मुश्किल है जीना द ग्रेट लता जी

A masterpiece of composing by Maestro Eminem, the great Madan Mohan Ji. Aura dikhaja film Saheb Bahadur Misi Nikalat Hai, het is een Rubiaan uit 1980, geschreven door Rajinder Krishan Ji. Kya awaz kya dard tha is gane mein jo Lata Ji ne hum logo ko suna rahe the. साथियों घड़ी की तरफ देखता हूं तो 5 मिनट रह गया है 9 बजने में, तो एक डेढ़ मिनट का आलाप सुनिए सुरों का बादशाह, किंग ऑफ मेलोडी, रफी साहब जी की आवाज में.

0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं के बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशल ओबिलोबियम ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतुलक बदाउट फॉर हेड लाइस्टरन। जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइशें जरूरी खबरें इश्तिहारे डेंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप सभी से सदियों से यही कहते आ रहा हूं कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेज भर में नहीं मिलेगा। साथियों आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेल टेडेंस कांटोर यूर फन मांडाग टोट फ्रेडाग ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कांटोर 07-365-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना देखन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवेंट फ्रॉम हार्ट वेलकम। और इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रेक्लाम बनाते रहना हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। Benti noch in let van faun in Dushtani Radio to guzar is dividin kiya ja raha hai binti kiya ja raha hai ki aap bhi jal se jal faun in Dushtani Radio ka member bane auron ko bhi banaye aapko to dher sare fayda hi fayda hai and so als jullie allemaal al weten hebben we ook onze eigen karaoke team hè waar heel veel omroepsters live voor u aan het zingen zijn. En jullie hebben het ook al twee keer gehoord, hè? Elke laatste donderdag van de maand vanaf 6 uur 's avonds live karaoke op de radio bij Faun Hindustani Radio. Mensen hebben ons al geluisterd en hele goede responsen tot nu toe, dus blijf luisteren. Volg onze social media's van Omroepers en Faun Hindustani Radio, dan hoort u of ziet u heel gauw en snel waar wij voor u live gaan zingen. Hè? Daar bent u ook van harte welkom. Tobi Jelse Jult, Faun Hindustani Radio kan member benee, ouwe ook op hier. Sabie Jankari bel op 070-70-365-2247. Wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider van Faun Hindustani Radio, de one and only maestro Johnny Number One. 5 minuten guzar chuka hai, 9:07 saathiyon, bite hue hafte hum log पहुंच चुके थे फिल्म चरस तक जो रिलीज किया गया 1977 में और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है अपनी दूसरी पत्नी जी के साथ मलकाए हुस्न ब्यूटी क्वीन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के साथ और नेगेटिव रोल में है अमजद खान अरुणा ईरानी और अजीत भी इस फिल्म में काम किए हैं। तो फिल्म चरस्याब गाने सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ है आनंद बख्शी के अल्फाजे एक अति सुंदर बयान आप सुनने वाले हैं जो मैं प्लेयर में रख चुका हूं आप सभी के खिदमत में और लाते हैं प्रोग्राम में संगीतकारों और महान महान कलाकारों का बादशाह और शहिंसा हसीनों का पुजारी किशोर दा को लाते प्रोग्राम में साथ दे रहा है उनका भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी सुपर हिट सॉन्ग कल की हसीन मुलाकात के लिए।
1: गुड नाइट।
0: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

Beautiful song, a wonderful song. From the movie Charis, 1976. Sangeet Kanuka, Badshah, Shahin Shah, the one and only Kishore Da, aur Lata Ji ke awaaz mein aap sun rahe the. मिनट गुजर चुका है 9:07 साथियों और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर और नगमे चल रहे हैं जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है. हम पहुंच चुके हैं फिल्म चरस तक जो रिलीज किया गया था 1977 में. सुपर मूवी. अगला बयान जबरदस्त द्वैत सुनिए सुरुका देवी और सुरुका बादशाह के अल्फाजों में. रवि साहब और लता जी सुनाते हैं आप सभी को आजा तेरी याद आई. ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम.

ब्यूटीफुल सॉन्ग क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में ऑल इज गोल्ड फ्रॉम द मूवी चरस 1976 गकंपोनेर्ड डोर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गेस्क्रीवन डोर आनंद बख्शी और आवाज लता जी चिमिट बाकी है साथियों 9:30 बजने में अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है और लाते हैं प्रोग्राम में एक बार आज के रात्रि में क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री नाइटिंगेल आयशा भोसले जी का ये सुपरहिट सॉन्ग आई द फिल्म चरस 1976 गकंपोनेर्ड डोर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड गेस्क्रीवन डोर आनंद बख्शी मेरा नाम है बालेरीना पिक्चराइज किया गया है ब्यूटी क्वीन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी पर तो जरूर फुर्सत मिले तो ये जबरदस्त सुपरहिट मूवी जरूर देखना दिस टिजीन ऑफ यू टू

Beautiful song, great composing by Mahan Sangeetkar Jodi Lakshmikant Pyarelal. Uit de film Rus 1976. Aur Likhae Anand Bakshi Asha Bhosle Ji ke Beautiful Awaaz. Pure 9:30 ka waqt ho chuka hai saathiyo. Agla bayan jabardast song hai. Uit de film Charis, Mahendra Kapoor is baar Padma Shri Ji. Kolate hai Arun ka saath de raha hai Queen of Rock and Roll from the Bollywood Film Industry Nightingale Asha Bhosle Ji. Lakshmikant Pyarelal ke saaj hai aur alfaz hai Anand Bakshi Ji ka. Ek baar fir kuch Charis yani ya drugs yani Charis jise हाशिश हम लोग कहते हैं यहाँ पर हाश उनके बारे में इस फिल्म को बनाया गया था तो उन्हीं के बारे में ये गाना भी आप सुनिए ये चरस का नहीं और कुछ का धुआं है.

0: Jersey, Jersey. Title song from the movie Jersey, Queen of Rock and Roll. Așa poți legi că Beautiful Amaz Meti Sundra Piana Sundra Eteca Componedor Lecce mi cantiare lau E la più le scrivitor Anen Bakshi Ji Ce mi le guzar ciuca hai Satio साढ़े नौ बजकर अगला बयान और ये भी आखिरी सॉन्ग है इस फिल्म चरस आप सुनिए एक बार फिर सुरों का देवी भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये एक अति सुंदर दिल को छू लेने वाला बयान है जरा अल्फाज पे जरूर ध्यान देना क्योंकि मैं एक शरीफ लड़की बदनाम हो गई कह रही है लता जी सुरों में
1: धूम जवानी धूम

चल गए हम रिश्ते को निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए हम रिश्ते को निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत है, और हम थक गए दर्द को छुपाते छुपाते। The five rules to win in life is control your emotions. Don't waste time on people who don't care. Keep your goals private. Keep your goals private. Wake up with purpose. Never give up. वो तो हमारे हमारे ही स्टाइल में बोलता भाई। Never give up, no matter what, and remember that. तो ये था कुछ अलग स्टाइल का शेर शायरी आज का इस हसीन रात्रि के प्रोग्राम में। अगला बयान आप सुनिए सभी नगमे मैं फिल्म चरस को आप सभी को सुना चुका हूं। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था इन 1976 फिल्म, या दिल को थाम लीजिए माँ मामा मुदर फिल्म माँ 1976 में। और इस मूवी में धर्मेंद्र जी ने काम किया है नौखन केर मिट सेंट ट्वीड सेकंड वाइफ मलकाय हुस्न द ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के साथ, और माँ का रोल अदा की है द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सुपर एक्ट्रेस निरूपा रॉय जी ने। ओम प्रकाश और पेंटल भी इस मूवी में काम किए हैं। एक बार फिर द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ है, और अल्फाज़े है अगेन फ्रॉम मास्टर आनंद बख्शी। तो फिल्म माँ से आप गाने सुनिए खलेक बिंगो है खलेक माँ तुझे ढूंढू कहाँ, जबरदस्त सॉन्ग माताओं के बारे में। तो जरा गौर से सुनिए अल्फाजे पे ध्यान दीजिए और जरा अपने माँ को भी याद कीजिए। क्या बात है, क्या अल्फाजे लिखा है आनंद बख्श। हम इफ स्टिल फंग तो और दो माँ तो माँ होते हैं यारो,

क्या बात है माँ, तुझे ढूंढू कहाँ। रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर दर्द सा भरा हुआ बयान माँ के बारे में आप सुन रहे थे। फिल्म माँ टाइटल सॉन्ग कॉम्पोनेड और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, स्क्रीफ और आनंद बख्शी जी। 9 मिनट रह गया है 10 बजने में साथियों। अगला बयान और इस बार लाते हैं संगीतकारों का बादशाह और शहिनशाह हसीनों का पुजारी किशोर दा एक बार फिर प्रोग्राम में है, जो फिल्म माँ 1977 तक। और सुनाते हैं आप सभी को ऐसी कोई बात।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे आमदनी के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। आमदनी के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

कौन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट इसी अक्टूबर 2020 का रात्रि का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। 4 मिनट गुजर चुका है 10 बजकर रात्रि का प्रोग्राम है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, ससलो बिलो बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अनतिलक बदंत फॉर एट लिस्टन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से इस तिहारे जरूरी खबरें डैंक अनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो। नाम सर्फिस गारंटी और क्वालिटी स्टार बियॉन्ड्स ऑफ द एयरस्ट प्लांट्स। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें फन मांडाग टू फ्राइडाग टेडेंस कंटोर उरे ऑप 07-365-2247। जो भी रेडियो का काम होना, डेंक अन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। यदि नो खैन लेट फन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एंड सो अस यू लेट अलमाल हैव गोर्ड है, वो हैव ओ कौन से एक कारा ओक टीम एल्क लास्ट डोंडरडाग फन द मंथ फनाफ 6 uur s'avonds live karaoke op radio फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बनी औरों को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। तो आप भी आकर इस छोटा सा मोटा सा जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बन चुका है और बनते जा रहे हैं, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए। सभी जानकारी न्यू सीफ्रीफेंसिम फिर तक पर आप तार करें और ऑटोमेटिक डोर फॉर बंदनारों से टीम लाइडर फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो डॉन एंड ओनली मास्टरो Johnny number 1. En natuurlijk bent u ook van harte welkom. Volg onze social media en ook die van onze omroepers. Dan gaat u zeer zeker binnenkort zien waar wij live voor u komen zingen, hè, gaan optreden. Dan bent u ook van harte welkom. Tot ziens. कुछ नेक मेरे गया है सुनाने को आप सभी को। फिल्म माँ से जो 1976 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म में धर्मेंद्र ने काम किया है हेमा मालिनी जी के साथ। एक बहुत ही मजेदार सॉन्ग है, रफी साहब जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे। गाऊंगा नाचूंगा रोऊंगा हंसूंगा क्या बात है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ।

0: अरे सॉन्ग असल में वो धर्मेंद्र जी के ऊपर पिक्चराइज किया गया है नगमा, और वो इस फिल्म में एक हाथी को मना रहा था। मजेदार सॉन्ग। 12 मिनट गुजर चुका है साथियों, 10 बजकर धीरे धीरे वह भी करीब आने लगा है, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में आई फिल्म माना तिलक ने 1977 गकंपोनीड और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गेस्क्रीवे दो आनंद बख्शी जी मिलके सुनते हैं ये जबरदस्त ब्यूटीफुल सॉन्ग शहरों से दूर मस्ती में।
1: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

Ja, wat een beautiful song. Maar het ritme Queen of Mary, Lata Mangeshkar ji ke beautiful. Awaaz mein aap sun rahe the uit de film Ma 1976, gecomponeerd door Lakshmikant Pyare Lal ji. To my dear son, अपने प्यारे बेटे के लिए पिताजी ने कहता है यारों की, try your best, one day you will look back on your life and congratulate yourself, smile and say it was hard, but I did it. नाराज़ों ने साथ दिया ना मंजिल ने इंतजार किया, नाराज़ों ने साथ दिया ना मंजिल ने साथ और इंतजार किया. ये जिंदगी के बारे में शेर है यारो. मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरा साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया. Glück haben, have luck. Luck is not in your hands, but decisions are in your hands. Your decision can make luck, but luck can never make your decision. So always trust yourself. A special friend is hard to find, hard to lose, and impossible to forget. True friends are never apart, maybe distance, but not by the heart. Afrischeer, omdat het zo mooi is, nog een keer. 5 rules to win in life. Control your emotions. Don't waste time on people who don't care. Keep your goals private. Wake up with purpose. Never give up, no matter what.

था कुछ आखिरी शेर, 10 मिनट रह गया है यारो आप सभी से विदा लेने को, लेकिन उससे पहले ये आखिरी बयान आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एड फिल्म अम्मा और सुनने को जा रहे हैं आप सभी को सुरों का बादशाह रफी साहब जी। हतारी मैं तो शिकारी हूं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर आनंद बख्शी के अल्फाजे।

Abash, Alain, the king of melody, Rafi Saab ji, ye sab kuch kar saka, aur hum log ke liye sirf yaade chhod gaye. To saathiyon, yahi tak tha aaj ka mere hisse ka कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया. यश उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं यारों की जिस तौर तरीके से मैं कोशिश की आप श्रोताओं को सेवा करने में, यश उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा. अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूं. सरनामी संगीत लेकर पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में सिर्फ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री. तो हमें आप सभी इजाजत दे, हमारे बाद आप श्रोताओं को सेवा करने वाला है महान अनुसर साथी और हम लोग का टीम लीडर मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन टेक ओवर करेगा. तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना और जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ न कुछ गुनगुना देता हूँ यारो आप सभी के याद में. और आज मैं चुना हूँ एक बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है माइकी मुकेश जी का गाया हुआ और द ग्रेट मुका के याद में कोशिश करता हूँ ये सुपर हिट गाना को एक बार ट्राई करता हूँ.

फूल को भी तुझको रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रिय से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और 1959 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

तो करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। ओ और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर, ऑल इज गोल्ड फॉर

और हट जाओ और दीवाने आए, और कौन सा दीवाना आएंगे, हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं, और सुना जाए माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

फनहुन के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फनहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

यारो देखा जाए आपको हम नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग सुनाते हैं, और ये कौन सा गीत है, मूवी का नाम है, यानी कि एक मस्त भरी गीत है, अभी आप लोग को बताएंगे और आगे इस गीत के बारे में।

जोड़ते थे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन, तो ये अनजाना है कमल हसन रति अग्निहोत्री का ये मूवी एल्बम है, नचिकेता जी का ये सॉन्ग है, एक और हो जाए।

और मूवी एक दूजे के लिए फन 1981 निकलते हैं न तख्त का ये सॉन्ग है एक और चलते हैं यार निकलत का अलका यांगनी कुमार शान उदित नारायण का ये गीत है जो आपको जरूर पसंद होगा।

और चेहरा तो क्या देखियो भैया, दिल में उतरियो तो उसका मजा आपको और मिलेगा। कयांगनी कुमार चानू।

और देखा है, क्या देखा है, क्या देखा है, साजन के प्यार देखा है, और कहां देखा है, आंखों में जाकर देखा है, और देखा है तो और आगे क्या देखेंगे। नैतिकेल लता जी परमाशी मोहम्मद रफी का एक और सॉन्ग हो जाए, तेरे नीले नीले आंखों की।

और दोस्तों जोंग जोंग जोंग मूवी का नाम है तुमसे अच्छा कौन है 1969 रंगत तेरी सूरज से इस An romantic duet song by the golden voice of Nightingale, Lata Mangeshkar and Padma Shri Mohammad Rafi White Hasrat Jaipur song the hits. उसके बाद हम चलते हैं मूवी का नाम है वक 1965 का एक सुपर हिट सॉन्ग है जो Padma Shri Rafi जी का यानी कि रफी जी का सॉन्ग है और सुना जाए

और ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझको मालूम नहीं है कि आप कितना हसीन है, और तुझे ये भी मालूम नहीं है कि अभी हम कितना जवान है। ये तो बातचीत हो रहा है और ये बात तो दो प्यार करने वालों के लिए है। और उसके बाद हम चलते हैं, आप यहाँ आए और जॉनी के पास किस लिए गीत सुनने को, आप यहां आए किस लिए। और दादा किशोर जी का ये सॉन्ग है, आशा भोसले का ये गाना है, हिंदी मूवी सॉन्ग। तो दोस्तों, किशोर दादा आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है कल आज और कल। 97.1 का ये प्यार भरी मस्त भरी सॉन्ग है, जिबर हिट सॉन्ग।

0: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओ

0: है तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: और आपको मुस्कुराने की तो बात है दोस्तों, और ये गीत एक बेमिसाल गीत किशोर दादा आशा जी का, और हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर। वो है, वो क्या है, आप खुद ही सुनिए। चेहरे पे खुशी छा जाती है, क्यों छा जाती है, जो किसी को प्यार आ जाते हैं।

और सर से वो सर की तो कभी धीरे धीरे के सांझ में हम चलते गोविंदा और नीलम की ओर, वो है खुद गर्ज, मूवी का नाम है खुद गर्ज, सुपर हिट सॉन्ग, मैं से मीना से नाचा की डेली कैलेंडर शो है।

और आप की आजानी से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूँ तेरा नाम।

कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

तुम बदल न जाना, मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं। मूवी के नाम है राजा निघंटिन 105 नेकत का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और चरण फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा शरबानु राजेंद्र कुमार का ये सॉन्ग है, फिल्म है, और जिसमें मूवी के नाम है यहाँ पर बताई गई है इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत आओ सुना जाए।

पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरबानू अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नई खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी। इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सायरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही नार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।